हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे भक्ति संगीत आराधना अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। श्रोताओ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, तो आप सभी यूं ही बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।
1: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुम सारे का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कहने श्रोताओ, मैं या तुम भी अपनी रेडियो दोस्त रुचिका हाजिर हुई हूँ कार्यक्रम लेकर ही माटी दी महक। श्रोताओ कर दे अज दे कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे दे गीते कहने, तुम सारे इं बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अखे।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तोहंदा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तोहा सारी कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक।

ये तो हम अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तो हाँ कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कने तो हाँ सारे इन्हीं बनी दिया रेडियो गुंजन धर्मशाला ने गूंज अपने पंदी।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार होना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

जैकपॉट।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

नमस्कार, 91.9 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। कुल्लू मंडी और चंडीगढ़ के बीच हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। हिमाचल के युवा सीखेंगे चीन की भाषा। 3 माह में होगी कामकाज की समीक्षा। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। जापान में हिमाचल की बेटी की चमक। उपराष्ट्रपति 10 को करेंगे वंदे मातरम एक यात्रा। प्रदर्शनी का उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से।

मानसून के मद्देनजर जन सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीडीएमए कांगड़ा हेमराज फैरवा ने जिला कांगड़ा में नदियों, खड्डों, नालों, झरनों, बांधों, जलाशयों तथा अन्य जल स्रोतों के समीप जाने और जोखिमपूर्ण गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने संबंधी आदेश जारी किए हैं। ये आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए हैं। उपायुक्त ने कहा कि मानसून के दौरान भारी वर्षा के कारण नदियों, खड्डों और अन्य जल स्रोतों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड, तेज बहाव और भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका बनी रहती है। ऐसे में लोगों तथा पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ये कार्यालय कुछ समय पहले ही शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के लोगों को इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा, जिससे उनके समय और धन दोनों की बचत होगी तथा आयोग की सेवाएं शीघ्रता और सरलता पूर्वक मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा को धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का कार्यालय भी शीघ्र खोलने के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने कांगड़ा जिले को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है और इसी दिशा में कई सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा स्थानांतरित किया जा रहा है। आने वाले समय में भी अन्य सरकारी कार्यालयों को कांगड़ा जिले में स्थानांतरित करने की योजना है। नगरोटा बगमा उपमंडल के अंतर्गत तंग, उथड़ा ग्राम, बलधर, जसोर सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य के कारण 31 जुलाई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज भैरवा ने बताया कि इस दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्ग योल भ्रोबड़ बलधर सड़क से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा देहरा उपमंडल में कुंडलहार से राजकीय हाई स्कूल मोहाल रोड तक 2 किलोमीटर सड़क पर सीसी पेमेंट बिछाने के कार्य के चलते 8 जुलाई से 28 जुलाई तक सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी। इस अवधि में यातायात को कुंडलहार नखेड़ पुलकरियाड़ा मार्ग से डायवर्ट किया गया है। उपायुक्त ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्माण स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग, सावधानी संबंधी सूचना बोर्ड तथा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को ओकओवर में मंडी से चंडीगढ़ तथा कुल्लू से मंडी चंडीगढ़ के बीच रोजाना चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं का वर्चुअल शुभारंभ किया। भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना RCS उड़ान के तहत मंडी चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर सेवा संचालित की जाएगी, जबकि गैर RCS मॉडल के तहत कुल्लू मंडी चंडीगढ़ के लिए हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस सेवा का संचालन किया जाएगा। RCS उड़ान योजना के तहत मंडी से चंडीगढ़ सेक्टर के लिए किराया 3500 रुपए निर्धारित किया गया है, जबकि कुल्लू मंडी चंडीगढ़ सेक्टर के लिए 8500 रुपए। बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था और सामरिक चुनौतियों के बीच हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने एक दूरगामी और ऐतिहासिक कदम उठाया है। CU में अब चीनी भाषा का कोर्स शुरू कर दिया गया है। ये पहल महज एक शैक्षणिक विस्तार नहीं है, बल्कि नोयोर एनिमी की तर्ज पर राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती देने का एक बड़ा रणनीतिक दांव है। इसके साथ ही चीन के साथ बढ़ते व्यापारिक रिश्तों के बीच प्रदेश के युवाओं के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों और देश के शीर्ष खुफिया व सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के असीमित अवसर भी खुलेंगे। भारत और चीन के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी अस्थिर सीमा है, जिसका एक अहम हिस्सा हिमाचल से लगता है। हिमाचल प्रदेश की बेटियों ने एक बार फिर वैश्विक पटल पर राज्य का मान बढ़ाया है। मंडी जिले के दूरदराज क्षेत्र की होनहार छात्रा भानुप्रिया ने भारत सरकार के प्रतिष्ठित इंस्पायर मानक अवार्ड स्कीम के तहत सकुरा साइंस हाई स्कूल प्रोग्राम में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान शैक्षणिक स्पर्धा जापान में हुई है। हिमाचल प्रदेश से इस वैज्ञानिक दल में शामिल होने वाली भानुप्रिया एकमात्र छात्रा रही है।
भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 10 जुलाई को एक दिवसीय शिमला दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में 10 से 12 जुलाई तक सरदार पटेल की दृष्टि, एकीकरण, एकात्मकता और संघवाद विषय पर त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वे वंदे मातरम एक यात्रा शीर्षक से आयोजित विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ये संगोष्ठी भारत के राजनीतिक एकीकरण के प्रमुख शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के असाधारण योगदान का पुनर्पाठ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के लिए भी राहत भरी खबर है। पिछले 4 माह से लंबित वेतन का भुगतान अब जल्द किया जाएगा। भारत सरकार ने ग्राम रोजगार सेवकों के वेतन मद से करीब 29 करोड़ रुपए की लंबित राशि की मंजूरी दे दी है। इससे सभी जीआरएस को एक साथ 4 महीने का वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार केंद्र से वेतन मद की राशि जारी होने के बाद अब भुगतान की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राशि संबंधित खातों में पहुंचते ही ग्राम रोजगार सेवकों को पिछले 4 महीने का बकाया वेतन एकमुश्त मिल जाएगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब एक ही स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों में समान अवकाश लागू किया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशक ने सभी जिला उपनिदेशकों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। बताया जा रहा है कि कई स्कूल कॉम्प्लेक्स में शामिल विद्यालय अलग अलग अवकाश कैलेंडर के तहत छुट्टियां कर रहे हैं, जिससे स्कूल समय, शैक्षणिक गतिविधियों और समन्वय में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसी को देखते हुए विभाग ने उक्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब प्रत्येक स्कूल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी विद्यालयों में एक ही अवकाश व्यवस्था लागू करना अनिवार्य रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में सोमवार को इंडोनेशिया पहुंचे। सीमा पर पहुंचते ही मेजबान देश के फाइटर जेट्स ने उनके विमान को एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का ये 3रा दौरा है। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन तथा एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी हिंद प्रशांत के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करना है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की बात करें तो ये करीब 2000 साल पुराने माने जाते हैं। प्राचीन काल में भारतीय व्यापारियों, हिंदू और बौद्ध संस्कृति का इंडोनेशिया पर गहरा प्रभाव रहा है। आज भी इंडोनेशिया के बाली और जावा में रामायण और महाभारत पर आधारित नृत्य, नाटक और सांस्कृतिक परंपराएं प्रचलित हैं। इसके साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे, पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
1: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
2: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
3: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
4: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
2: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
5: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
4: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
6: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
5: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
7: हमारी जनगणना हमारा विकास।
8: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
9: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
10: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
9: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
10: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
9: हाँ?
10: हाँ? याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस टीबी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
9: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
6: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
11: बात तो सही है।

तो सही क्या अनुदेश मेला ऑफ द ओमेगा हर्ट्स पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रचिका के साथ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बहुत ही अच्छी सी आज की सुबह की शुरुआत आप सभी की रही है ये उम्मीद करते हैं दोस्तों। आज यानी कि 8 जुलाई 2026 का दिन बहुत ही खूबसूरत से पलों के साथ शुरुआत होती है। कुछ लोगों की खुशी के साथ होती है तो कुछ लोग परेशानियों के साथ, बहुत से सोच विचारों के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, परेशानियां जिंदगी का एक पहलू है। जिंदगी में हंसते मुस्कुराते रहना बेहद जरूरी है। तो परेशानियों को थोड़ा सा साइड में रखकर जिंदगी को खुलकर एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज के समय में न जाने कब क्या हो कोई नहीं जानता। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे सामने आ रही हैं जिससे कि डर लगता है, एकदम से शॉक सा लग जाता है कि वाकई दुनिया आज इतनी मतलबी हो गई है, दुनिया आज इतनी बुरी बन चुकी है। सोचने वाली बात है। खैर दोस्तों, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। 9:05 हो चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि 9 से लेकर 11 बजे तक का ये सफर आप सभी एंजॉय करते हैं खूब ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे मनोरंजन के साथ। तो आज के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है, क्या खास बातचीत रहने वाली है? बरसात का मौसम है दोस्तों और ऐसे में खास बातचीत तो बनती है, खास करके स्वास्थ्य की हम बात करें। जी दोस्तों, हेल्थ सही है तो हम सही हैं, जिंदगी सही है। यदि हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है, तो जिंदगी बहुत ही एक कहते हैं ना, बोरिंग सी हो जाती है और समझ ही नहीं आता कि क्या करें और क्या ना करें। खैर, करने कराने के लिए तो अभी बहुत समय है आप सभी के पास, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ जानना आप सभी के लिए बाकी है। तो बिल्कुल दोस्तों, बने रहिए इंतज़ार के साथ, स्टेप बाय स्टेप एक एक बात जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 MHz पर। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ मनोरंजन की भी शुरुआत करते हैं और एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी तक पहुंचाते हैं। एंजॉय कीजिए दोस्तों अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये खूबसूरत सा गीत।

तो बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया और कार्यक्रम में समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। इस बहुत ही प्यारे से सफ़र में समय आप सभी जुड़े हुए हैं जी दोस्तों। और अब मौसम की ओर रुख करते हैं तो मौसम का हाल आंखों देखा आप सभी जानते हैं कि बारिश भी है और एक बहुत ही उमस भरी गर्मी भी, एक कहते हैं ना वो चिलचिलाती सी अजीब सी लगती है ना गर्मी ना सर्दी, मतलब बहुत ऐसा बुरा सा लगता है कि या तो बारिश हो जाए या तो फिर गर्मी रहे तो एक ही बात है, लेकिन ये थोड़ा सा ना अजीब सा लगता है। खैर आप सभी को बता दें कि इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय आप सभी महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और मौसम विभाग का क्या कहना है, किस तरह से हमें सावधानी की ओर चलना है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में मानसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 13 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान कई जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 11 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। 8 जुलाई को हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। 9 जुलाई की हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ मंडी और शिमला जिलों में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके बाद 10 जुलाई को 5 और 11 जुलाई को 6 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी रहेगा। तो दोस्तों ये अलर्ट हमें सावधानी के लिए होते हैं ताकि हम कोई भी ऐसी हड़बड़ी में जो है, क्योंकि गर्मी भी है ना साथ ही साथ, तो कहीं हम घूमने के लिए निकल रहे हैं तो नदियों में जो है नहाने के लिए चले जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, अपनी मनमानी के चलते, तो फिर हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में ध्यान रखें अपना भी और अपनों का भी, सबका ध्यान रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा भी औरों का ध्यान रखना वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कहते हैं ना कि साथ मिलकर आगे बढ़ा जाए तो हर रिश्ता निभाना आसान हो जाता है, तो इसी तरह से ज़िंदगी को भी आसान बनाया जा सकता है। तो फिलहाल तो हमें कार्यक्रम में इस प्यारे से माहौल को और ज़्यादा मनोरंजन से भरना है, तो आइए दोस्तों देर किस बात की है, एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

0: सोचिए दोस्तों, जिंदगी में जब जिसका फितूर चढ़ जाता है ना, तो सब कुछ फीका फीका सा लगता है। उस फितूर के लिए हर कुछ कुर्बान करने का मन करता है, वाकई में करता है ना जी दोस्तों। फिलहाल दोस्तों, ये फितूर हम यहीं पे रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी समय है प्रादेशिक समाचारों का। तो आइए सुनते हैं समाचार, उसके बाद फिर से वापस आते हैं अपनी इन ढेर सारी बातों और प्यारे प्यारे से गीत संगीत के साथ।
1: उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति में निरंतर विस्तार के कारण उपभोक्ताओं के लिए संभावनाएं अनुकूल बनी हुई है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का दौरा करेंगे। अपने इस प्रस्तावित एक दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री केलांग में बनने वाले हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सेंटर का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री 10 जुलाई को कुल्लू पहुंचेंगे और अगले दिन लाहौल स्पीति जाएंगे। मंडी से सांसद कंगना रनौत भी उनके इस दौरे में शामिल रहेंगे। नड्डा के इस दौरे को लेकर लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। जिला मुख्यालय केलंग में एसडीएम कुनिका एकर्स ने केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर की जा रही तैयारियों की एक बैठक में समीक्षा की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक स्टाफ नर्सों की भर्ती पर लगी रोक को हटाने से इनकार कर दिया है। प्रदेश हाईकोर्ट में बीते रोज आउटसोर्स भर्ती मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की ओर से भर्ती पर लगी रोक हटाने या पहले घोषित परिणाम के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र जारी करने की अनुमति देने की मांग की गई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह के भीतर आउटसोर्स आधार पर की गई तमाम नियुक्तियों की जानकारी अदालत को उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। खंडपीठ ने सरकार की नई नीति पर भी सवाल उठाया और इसे युवाओं से खिलवाड़ व शोषण वाली नीति बताया। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा स्टाफ नर्सों की भर्ती के लिए बनाई गई नई नीति न केवल स्वास्थ्य सेवाओं के साथ खिलवाड़ है, बल्कि स्टाफ नर्सों के भविष्य के साथ भी भेदभाव है। किन्नौर जिला के देव समाज टुकपा खुनांग से जुड़े 16 गांवों के देवी देवताओं के कारदारों ने जिला प्रशासन से अवैध रूप से हो रही किन्नर कैलाश यात्रा को बंद करने की मांग की है। इस संबंध में कारदारों की ओर से उपायुक्त अमित कुमार शर्मा को एक ज्ञापन सौंपा गया। कारदारों का दावा है कि जिला प्रशासन की रोक के बावजूद अभी भी किन्नर कैलाश यात्रा अवैध तरीके से जारी है। देव समाज का कहना है कि इस मामले को पहले भी 2 बार जिला प्रशासन के समक्ष उठाया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देव समाज ने चेतावनी दी है कि यदि 10 जुलाई तक जिला प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो देव समाज जन आंदोलन करेगा। चंबा जिला में जनजातीय समुदाय के लिए निर्मित आवासीय परिसरों को अन्य कार्यों में उपयोग किए जाने पर स्थानीय संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। पांगी कल्याण संघ और गद्दी संस्कृति विकास मंच के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में चंबा के उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि चंबा शहर में स्थित जनजातीय सराय और बालू स्थित जनजातीय भवन को केवल जनजातीय समुदाय के लोगों के उपयोग के लिए ही प्रयोग करें। इन संगठनों के पदाधिकारियों भगत बड़ोत्रा और शिवदयाल ने कहा कि इन भवनों का अन्य कार्यों के लिए उपयोग होने के चलते जनजातीय लोगों को चंबा में ठहरने में भारी दिक्कतें हो रही है।
2: जो भवन है, चाहे ये सराय है, ये सब ट्राइबल सब प्लान के पैसे से बने हुए हैं, तो इनका अधिकार और वर्तन जो है वो हमारे पांगी के लोगों को या बरमौर के लोगों को या अन्य जो भी जनजातीय क्षेत्र से आए हुए लोगों को मिलना चाहिए, ऐसा हमारा मानना था। तो आज की ये मुलाकात जिलाधीश महोदय को हमने रिटर्न में दिया हुआ है, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि जल्द हम इसको आप लोगों को सपोर्ट करेंगे।
1: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण दुनिया भर के पर्यटकों में मशहूर कुल्लू जिला अब ब्राउन ट्राउट मछली के नाम पर भी सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जिले की विभिन्न घाटियों में मत्स्य पालन विभाग ने सफलतापूर्वक ब्राउन ट्राउट मछली के बीज का संचयन किया है। इससे जहां स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, वहीं पर्यटक भी मछली आखेट की ओर आकर्षित होंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता।
3: कुल्लू जिला में ट्राउट मत्स्य संसाधनों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मत्स्य विभाग कुल्लू द्वारा ट्राउट मत्स्य बीज का संचयन किया जा रहा है। इसी के तहत पंसिमन वैली यानी लगघाटी के समलेरा त्यून कालंग ग्रामक तथा कड़िंचा क्षेत्र में सरवरी नदी में आयातित ब्राउन ट्राउट मत्स्य बीज का सफलतापूर्वक संचयन किया गया। इसके अलावा कसोल मनकन घाटी के छलाल क्षेत्र में पार्वती नदी में भी आयातित ब्राउन ट्राउट मत्स्य बीज का संचयन किया गया। कुल्लू के विधायक सुंदर ठाकुर का कहना है कि जिला की जलधाराओं में ब्राउन ट्राउट मत्स्य बीज का संचयन न केवल ट्राउट मत्स्य संसाधनों को समृद्ध करेगा बल्कि एंगलिंग प्रकृति पर्यटन इको टूरिज्म तथा साहसिक पर्यटन को भी नई गति प्रदान करेगा। इस पहल से पर्सिमन वैली की पर्यटन संभावनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा स्थानीय युवाओं एवं ग्रामीणों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मत्स्य विभाग के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों व मत्स्य प्रेमियों से अपील की है कि वे मछलियों के अवैध शिकार से दूर रहें तथा मत्स्य संरक्षण गतिविधियों में विभाग का सक्रिय सहयोग करें ताकि प्राकृतिक जल धाराओं में ट्राउट मत्स्य संसाधनों का दीर्घकालिक संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
1: हिमाचल पथ परिवहन निगम चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष मानसिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि वो कर्मचारियों को एस्मा के नाम पर डराना बंद करें। मानसिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार कर्मचारियों को समय पर उनके हक और सुविधाएं प्रदान करें। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम में कोई 1500 दिहाड़ी वाले चालक नहीं है बल्कि वो 3-3 टेस्ट पास करके चालक बने हैं। कुल्लू जिला में बीती देर शाम बादल फटने की 2 घटनाएं हुई। पहली घटना जिला की गड़सा घाटी के शिला नाला में हुई। इसके चलते नाले में जलस्तर बढ़ गया और पैदल चलने वाली एक अस्थायी पुलिया बह गई। दूसरी घटना जिला के निर्मण क्षेत्र के नगेड़ गांव के ऊपर पहाड़ पर हुई। इस घटना में भी नाले में जलस्तर बढ़ गया। दोनों ही घटनाओं में फलों और फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। हालांकि इन घटनाओं में किसी भी प्रकार के जानी नुकसान की सूचना नहीं है। कुल्लू जिला प्रशासन ने जिले में भारी बारिश से नदी नालों के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है और स्थानीय लोगों व पर्यटकों को नदी नालों से दूर रहने को कहा है। जिले में हो रही लगातार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इस बीच प्रदेश में मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति कुल्लू और चंबा जिलों में सुबह से वर्षा का दौर जारी है जबकि अन्य स्थानों पर मॉनसून के घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों हमीरपुर कांगड़ा मंडी शिमला और सिरमौर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार प्रदेश में 11 जुलाई तक मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय बना रहेगा। लाहौल स्पीति में किसी भी प्राकृतिक आपदा के दौरान अब आपदा मित्र प्रशासन के मजबूत सहयोगी बनेंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लाहौल स्पीति में आपदा मित्रों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और इन्हें बीते रोज आपदा मित्र किट भी वितरित कर दी गई। इस मौके पर उपायुक्त किरण भड़ाना ने कहा कि आपदा मित्रों को मनाली स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान में विशेष प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि भूस्खलन, हिमस्खलन, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं के दौरान ये युवा आपदा मित्र जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्यों में सहयोग करेंगे। उन्होंने युवाओं से समाज सेवा और आपदा के समय सक्रिय भूमिका निभाने का भी आह्वान किया। अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी, हाईकोर्ट का असिस्टेंट स्टाफ नर्सों को फिलहाल तैनाती देने से इनकार, नई उद्योग नीति का ड्राफ्ट तैयार शीर्षक से। दैनिक भास्कर लिखता है, उद्योगों को 15 दिन में मिलेगी मंजूरी, ग्रीन इंडस्ट्री और रोजगार पर रहेगा बड़ा फोकस। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है, शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित होंगे और कार्यालय। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहने पर देश में घट सकते हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 11 जुलाई को करेंगे लाहौल स्पीति का दौरा, तैयारियां जोरों पर। प्रदेश हाईकोर्ट ने नर्सों की भर्ती पर रोक हटाने से किया इनकार। कुल्लू घाटी अब पर्यटकों को ब्राउन ट्राउट मछली के नाम पर अपनी ओर करेगी आकर्षित। और प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय, कुल्लू की गड़सा घाटी और निर्मण क्षेत्र में बादल फटे, कोई जानी नुकसान नहीं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

दोस्तों समाचारों के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। दोस्तों कहते हैं कौन किसका साथ जो है वो कब तक देता है। साथ के लिए हम अलग अलग लोगों को अपनी जिंदगी में एक बहुत ही खास स्पेस दे देते हैं, लेकिन कौन सा इंसान उस साथ को कब तक निभा सकेगा ये कोई नहीं जानता। और आज के समय में, आज की डेट में इतना झूठ फरेब, इतना गलत हर इंसान के साथ हो रहा है कि किसी पे विश्वास करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। दोस्तों बच्चियों के साथ आए दिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो क्यों इतनी बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों हर बार आप सभी के साथ जुड़ती हूँ कुछ सवालों के साथ, क्योंकि ये सवाल हमारी जिंदगी से जुड़े हैं। क्यों बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? क्यों आखिर एक बच्ची को ही अपनी जिंदगी कुर्बान करनी पड़ती है? क्यों हमारा नजरिया इतना बदल गया है? क्यों हमारी सोच इतनी बदल गई है? जितना हम सोच रहे हैं कि हम इन क्राइम केसेस को कम करने की कोशिश करें, उतने ही ये जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उतना ही गलत किए जा रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि समाज साथ में नहीं है। हम कहने को कह देते हैं कि हर इंसान का साथ दे सकते हैं, हम देश को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन अपने समाज में एक बच्चियों को कंफर्ट वाला माहौल, एक सेफ माहौल हम दे नहीं पा रहे। कुछ समय के लिए हम बहुत उत्साह के साथ उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर वैसा ही फीका फीका सा नजर आता है, फिर वो बातें वहीं दब जाती हैं एक तरह से। जाने वाला तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन क्या आगे आने वाले समय में और बच्चियों के साथ गलत ना हो, क्या उसके लिए हमें कोई स्टेप उठाना नहीं चाहिए? दोस्तों 13 साल की बच्ची क्या होती है, अभी छोटी सी बच्ची, और आप सभी ने ये न्यूज़ सुनी भी होगी, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि 30 लोगों ने उस बच्ची के साथ गलत किया। तो क्या इस बात पे सवाल नहीं उठते हैं? हमारा नजरिया, हमारी सोच कहाँ तक मायने रखती है? कहाँ तक ये चीजें, इन समस्याओं का समाधान निकल रहा है? कहते हैं ना कि कोई भी अगर गलत कर रहा है तो उसे जब तक उस गलती का एहसास ना दिलाया जाए, तब तक दूसरा इंसान गलत करने से पहले 100 बार नहीं सोचेगा। क्योंकि लोगों को पता है कि हम गलत करेंगे, लोग कुछ नहीं कहेंगे, कुछ समय के लिए, 1-2 दिन के लिए बहुत उत्साह में हमारे खिलाफ आएंगे, हमें मारेंगे, हमें डांटेंगे, हमें गुस्सा करेंगे, लेकिन फिर हम उन चीज़ों से बरी हो जाएंगे, उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा और हम आज़ाद हैं। वो फिर से एक गलत घटना को अंजाम दे देंगे और उन्हीं की तरह न जाने कितने और लोग इन गलत चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं। और आने वाले समय में अगर हम इसी तरह से चुप बैठे रहे तो न जाने और कितनी बच्चियों को अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गंवानी पड़ेगी, इसी तरह से कुर्बान करनी पड़ेगी। क्यों हम बच्चियों की ज़िंदगी के लिए सीरियस नहीं हैं? दोस्तों लाड प्यार तो बहुत दिया जाता है, लेकिन जिस तरह से एक फैमिली फिर भी सपोर्ट करती है, लेकिन ज़रूरत होती है समाज को सपोर्ट करने की, वहां समाज क्यों उन बच्चियों का सपोर्ट नहीं कर रहा? क्यों उन्हें एक अलग सा फील होने दिया जा रहा है? क्यों हम उस नजरिए से उन्हें देख रहे हैं? क्यों हम उन्हें इतना एक अनकंफर्टेबल सा माहौल दे रहे हैं जिसमें कि वो खुलकर सांस नहीं ले सकती, खुलकर एक तरह से अपनी जिंदगी को नहीं जी पा रही? अगर वो इतनी सी उम्र में ही सेफ नहीं है तो आगे आने वाले समय में वो कैसे खुद को इन घटनाओं से लड़ने के लिए मजबूत कर सकेंगी?
अगर आज उनके लिए ये सबक ना दिया गया उन गलत करने वालों को, जो गलत कर रहे हैं उन्हें उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो, ताकि दूसरे वाला इंसान उसी गलत बात को करने से पहले उसकी रूह तक कांप जाए कि अगर मैं ये गलत करूं तो मेरे साथ क्या होगा। हम दूसरे घरों की बेटियों के साथ गलत करते हैं, लेकिन अपने घर की बेटी पे बात आती है तो हम 100 सवाल खड़े कर देते हैं। हम उस इंसान को मारने तक के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समाज की बेटी की बात आती है तो हम बोलते हैं ये हमारे घर की बात नहीं है। क्यों? बेटियां पूरे समाज की हैं, बच्चे तो बच्चे हैं ना दोस्तों, वो पूरे समाज के, चाहे आपके घर के हैं, चाहे आपके पड़ोसियों के घर के हैं। हम सभी को इसके लिए जागरूक होना, हम सभी को इसके लिए आवाज उठाना बेहद जरूरी है। यदि आज हमने आवाज नहीं उठाई तो ना जाने फिर कितने लोग, खास करके हम कहते हैं जरूरी नहीं है सिर्फ लड़कियों के साथ, तो लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है, लेकिन गलत की सजा उन्हें दी जाए तो शायद ये कम हो सकती हैं चीजें, ये घटनाएं कम हो सकती हैं। चाहे लड़की गलत कर रही है, चाहे लड़के गलत कर रहे हैं, लेकिन लड़कों के साथ अगर गलत होता है तो लोग उसके लिए इंसाफ ले भी लेते हैं और उन्हें मिल भी जाता है, लेकिन लड़कियों की बात आ जाती है तो न जाने बातें क्यों दब जाती हैं, क्यों उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता, क्यों उस पर 2 दिन के बाद बात नहीं की जाती। तो ये सोचने वाली बात है दोस्तों, ये मेरा नज़रिया है, बाकी आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। और आए दिन जो ये घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं, कभी 4 साल की बच्ची के साथ गलत हो रहा है, कभी 13 साल की बच्ची के साथ गलत हो रहा है, तो कभी 7-8 साल, मतलब ये आए दिन एक नई घटना हमारे सामने घटित हो रही है। क्यों क्यों ये केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं? हम तो अपने आप को एक जागरूक इंसान कह रहे हैं, जागरूक नागरिक कह रहे हैं, फिर क्यों इन बातों के लिए हम अवेयर नहीं हैं? तो ये बात एक सवाल है दोस्तों, जिंदगी ही सवालों से भरी है और इन सवालों का जवाब हमें खुद से लेना होगा। शुरुआत हर एक इंसान को खुद से करनी होगी, तभी एकजुट होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम सोचें हम नहीं कोई और करे, तो ये कोई और करते करते जिंदगी इसी तरह से निकलती जाएगी और समय हाथों से फिसलता जाएगा। तो ये सवाल है और इसका जवाब आपको खुद से मांगना है। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया, और सचमुच दोस्तों बहुत ही ये बातें जो जिंदगी से जुड़ी होती है ना, सचमुच बहुत इमोशनल होती हैं और हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि इतना मतलब क्यों, बट अगर हम आज सवाल नहीं उठाएंगे ना दोस्तों, तो आज किसी और घर की, किसी और जो है शहर की बात है, लेकिन कल को ये हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। लेकिन हम उसे बात का इंतजार क्यों करें कि जब तक वो हमारे घर तक बात पहुंचे हम तभी आवाज उठाएं, जब हमारे घर का कोई इंसान इस बात का एक तरह से शिकार हो, उस बात को फेस करे, हम क्यों इस बात का इंतजार करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती। खैर बाकी आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं इन चीजों को, लेकिन ये एक इसी बात की बात नहीं है दोस्तों। हम मैंने खैर एक एक बच्ची की बात के बारे में बात की, लेकिन नशे की भी हम बात करें तो समाज में नशा भी इतने बुरे हाल से फैला हुआ है, तो वहां भी हम यही बात करते हैं। क्योंकि नशे में भी लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही नशा करते हैं और हम सिर्फ लड़कों को ब्लेम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लड़कियां भी आज जब घर से बाहर एक स्ट्रिक्ट माहौल से, या यूं कहें कि जो वातावरण होने चाहिए, जो एक अटेंशन होने चाहिए, जो कंफर्ट जोन होने चाहिए, वो नहीं मिल पाती है कई बार। या कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ उन्हें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा छूट अगर उन्हें मिल जाती है तो उसका भी वो कई बार नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो इस तरह से चीज़ें मतलब अलग अलग पहलू रहते हैं, अलग अलग बातें रहती हैं, लेकिन समझना हमारे हाथों में है। तो हम यही बस किसी के भी मुंह से बात करेंगे या किसी के बारे में भी हम देख लें, किसी इंसान को देख लें, तो सभी लोगों के जुबान से एक ही बात निकलेगी कि ये उनका बेटा है, हम क्यों पढ़ें। अगर हम इन्हें कुछ बोलेंगे तो पता नहीं हम पे ही 100 सवाल उठ जाएंगे। बात सही है, क्योंकि आज का समय किसी को बोलने वाला तो है नहीं, सवाल तो उठेंगे। लेकिन यही सब बातें सोच के अगर हम अपने समाज में इन चीज़ों को फैलने देंगे, तो क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें आपके घर तक नहीं पहुंचेंगी? क्या आज का समय ऐसा है वाकई में कि कोई इंसान चाहकर भी अगर आवाज़ ना उठाए, गलत होता हुआ देखता रहे? तो कहते हैं ना दोस्तों, गलत करने वाले से बड़ा जो गलत होता है वो देखने वाला और उसे बर्दाश्त करने वाला होता है। जो आंखें देखकर भी आंखें बंद कर ले तो सबसे बड़ा गलत इंसान हम उसे मानते हैं, उसे नहीं जो गलत कर रहा है। तो क्यों हम इस गलत का भागीदार बन रहे हैं, क्यों हम इंतजार कर रहे हैं कि जब तक हमारे घर में ये चीजें नहीं आएंगी हम सवाल नहीं उठाएंगे, या हमारे घर में आएंगी तो हम दबा देंगे, हम सोसाइटी में इस बात को नहीं पहुंचने देंगे? क्यों? अगर ये बीमारी नशे की एक बीमारी है, अगर हम इसे एक गलत टैग ना दें, एक बीमारी समझ के हम इसे लोगों के साथ अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि लोग आपकी हेल्प करें। ये एक बुरी बात नहीं है, अगर समय रहते आप चीज़ों पे काम करें, समय रहते उस चीज़ को समझें, तो शायद जो आने वाला कल शायद बहुत बुरा हो सकता है वो सही हो सकता है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बुरा समय आए और हम कब उसके लिए आवाज़ उठाएं। क्यों क्यों करते हैं हम ऐसे? इंसान हैं, इंसानों की तरह रहिए। पहले के समय में कितना अपनापन था, कितना प्यार भाव था, कहाँ गया वो प्यार भाव, कहाँ गया वो अपनापन? पहले इंसानों का साथ होता था तो डर मन से भाग जाता था, अब तो इंसान इंसानों से डर रहा है। क्या समय आ गया है, कलयुग का ये चक्र हमें कहाँ लेकर आ गया है? और दोस्तों कलयुग में कहा गया है कि इंसान ही इंसान को मारेगा, यहाँ किसी राक्षस या किसी दैत्य की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इंसान ही एक इंसान को मारने के लिए काफ़ी है। और वाकई में यही हो रहा है, हम एक छोटी से छोटी बात को इतना बढ़ा देते हैं, इतना उसे अहमियत दे देते हैं कि हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत एक ना हमें तोड़ने वाली बातें हैं ये। तो घर की किसी, जब हम एक कहते हैं ना कि जब कोई हमें ऐसी बात, मैं आपसे ये कह रही थी ना कि हम कहते हैं कि दूसरे घर की बात है, हम क्यों इस पे पढ़ें, तो जब आप इस बात के लिए कह सकते हैं कि नहीं हमें नहीं पढ़ना इस मामले में, तो उसी बात को आप 100 घरों में क्यों फैला रहे हैं?
मान लिया कि आपको उस घर से उन उस घर के बच्चे से कोई लेना देना नहीं, अगर वो गलत कर रहा है तो आपको क्या उसमें, तो आप उसी बात को 100 लोगों में बैठ के मिर्च मसाला लगा के कैसे फैला रहे हैं, फिर उस बात में आपका जो भागीदारी है वो क्यों है? अगर सही में आपका कोई रोल नहीं है तो गलत में आपका रोल क्यों है, क्यों निभा रहे हो? दोस्तों हर बात मायने रखती है, हर बात हमारी जिंदगी से जुड़ी है। तो चाहे किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है, चाहे किसी बच्चे के साथ गलत हो रहा है, लड़के के साथ लड़की के साथ गलत हो रहा है, आवाज उठाना हमारा दायित्व है, साथ देना हमारा दायित्व है। किसी अनजान पर्सन के लिए जो है आप किसी की जिंदगी बर्बाद तो नहीं होने दे सकते। बाद में हम सोचते हैं कि काश उस समय हमने मदद की होती तो वो बच्चा या वो बच्ची इस दुनिया में होती। क्यों? जब समय हाथों से निकल जाता है, जब इंसान दुनिया से चला जाता है, उसकी कद्र तभी क्यों हमें महसूस होती है? क्यों? जब समय हाथों में होता है, चीजें संभलने लायक होती हैं, तब हम क्यों अपनी आंखें नहीं खोल पाते? ये भी सवाल है। दोस्तों रुचिका के साथ आप सभी जुड़ते हैं तो ढेर सारे सवाल जो है ना आप सभी तक पहुंचते हैं, और आप सच में यही सोचते होंगे कि पता नहीं क्यों मतलब ऐसी बातें, लेकिन दोस्तों ये हमारी रियलिटी से जुड़ी बातें हैं, और इस बातों को अगर हम नहीं सोचेंगे, नहीं इस पे विचार करेंगे, तो आने वाला समय सोच लीजिए किस तरह से होगा। शायद हमने सोचा भी नहीं होगा उस तरह से होने वाला है। तो समय रहते इस पे काम कीजिए और सोचिए, विचारिए, हो सकता है कुछ सुधार हो सके। जो गलत कर रहे हैं इंसान, उन्हें उसका जवाब ज़रूर दीजिए, ताकि दो और लोग जो गलत करने वाले हैं, उन्हें गलत करने से पहले उस हरकत के बारे में सोचना पड़े, समझना पड़े कि हमारा अंजाम क्या होगा। तो बिल्कुल दोस्तों इन्हीं बातों के साथ आइए फिर से बढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और भी बहुत कुछ खास आज के कार्यक्रम में रहने वाला है। ये तो कुछ जिंदगी से जुड़ी बातें हैं दोस्तों। इसी के साथ अगर हम बात करें कुछ हमारे आसपास की खास जानकारियों की तो वो भी हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ी बातें तो कभी ख़त्म होंगी नहीं, जब तक इस दुनिया में हैं बातें तो चलती ही रहेंगी। सिर्फ एक उद्देश्य है कि हमें अपने आप को सतर्क और जागरूक करना होगा। न जाने कब कौन इंसान आपको झूठ फरेब के जाल में फंसा ले, कब आपके साथ गलत कर जाए। तो इसलिए अपने बच्चों को भी इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि कोई गलत ना कर सके, जाने अनजाने में भी ना कर सके, क्योंकि ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके लिए हमें अगर किसी से लड़ना पड़े अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो पीछे मत हटिए, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर जिंदगी में कुछ नहीं है। दोस्तों नगरोटा बगवा उपमंडल के अंतर्गत टंग उथड़ा गांव बलधर जसौर सड़क पर पुलिया निर्माण कार्य के कारण 31 जुलाई तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। एक बार फिर से बता देते हैं, टंग उथड़ा गांव बलधर जसौर सड़क मार्ग है ना, वो 31 जुलाई तक जो है वो बंद रहेगा। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज वैरवा ने बताया कि इस दौरान यातायात को वैकल्पिक मार्ग योल भरोबड़ बलधर सड़क से संचालित किया जाएगा। इसके अलावा देहरा उपमंडल में कुंडलहार से राजकीय हाई स्कूल मोहाल रोड तक 2 किलोमीटर सड़क पर सीसी पेमेंट बिछाने के कार्य के चलते 8 जुलाई से 28 जुलाई तक सड़क सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगी। इसी अवधि में यातायात को कुंडलहार त्रिनकेड और पुलद्री करियाड़ा मार्ग से डाइवर्ट किया गया है। उपायुक्त ने संबंधित कार्यकारी एजेंसियों को निर्माण स्थलों पर उचित बैरिकेडिंग, सावधानी संबंधी सूचना बोर्ड तथा सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जी दोस्तों, तो ये बहुत ही खास जानकारी आप सभी के लिए, क्योंकि आजकल अपनी व्हीकल्स तो हर किसी के पास है, तो हम तो शॉर्टकट्स अपनाते हैं ना जिंदगी में। तो ये रास्ते किस तरह से बंद रहेंगे, किस तरह से आप जा नहीं सकते हैं, कहाँ से जा सकते हैं, आप सभी को बता दिया है। तो कृपया करके आप इन रूल्स जो भी आपके लिए ये सावधानियाँ ये फॉलो करें। इसी के साथ आइए दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों, इसी प्यारे से गीत के साथ समय है एक छोटे से अंतराल का, तो मिलते हैं आप सभी से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी इसी तरह से एंजॉय कीजिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ अपनी डेली की रूटीन दिन की शुरुआत आप सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं इन कुछ खास बातों के साथ, और बातें भी ऐसी जो हमारी जिंदगी से जुड़ी, डेली रूटीन से जुड़ी बातें। जी दोस्तों, कौन किसके साथ बाहर घूम रहा है, कौन किससे मिल रहा है, किसके घर की बहू कहाँ जा रही है, ये सब समाज को बड़ी आसानी से पता होता है। लेकिन किसके घर में आज चूल्हा नहीं जला, कौन अपने बीमार पिता के इलाज के लिए दर दर भटक रहा है, किस माँ ने अपने बच्चों को खुद भूखे रहकर खाना खिलाया, किस बेटी ने मजबूरी में अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया, ये जानने की फुर्सत किसी के पास नहीं। सच तो ये है कि आज इंसानों को दर्द से ज्यादा दूसरों की जिंदगी की खबरों में दिलचस्पी है। याद रखिए दोस्तों, अगर किसी के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो कम से कम उन्हें लोगों के बीच चर्चा का विषय भी मत बनाइए, क्योंकि किसी की मजबूरी कभी भी मनोरंजन नहीं होती। दोस्तों, मजबूरियां हमें जिंदगी में कहां से कहां पहुंचा देती हैं, ये आप सभी जानते हैं। दो वक्त की रोटी के लिए भी इंसान बहुत मजबूर होता है। हर किसी के पास जो है वो ताने भी सुनते हैं, बातें भी सुनते हैं, डांट भी सुनते हैं, सारी चीज़ें। बट फिर भी कई बार उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती। क्यों? एक रिस्पेक्ट के लिए हम जिंदगी में जी रहे हैं, इतना मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, और समाज की बातें हम करते हैं। तो ये सही कहा है दोस्तों, चंद शब्दों की लाइनें हैं लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है कि समाज को बस खबरें चाहिए, चाहे फिर वो किसी की मजबूरी है, चाहे वो किसी की किसी भी तरह से सिचुएशन है, लेकिन ये नहीं पता कि कोई कितने दर्द में है और किसी के घर की सिचुएशन क्या है, ये पता नहीं होता। तो यही है आज के समय की कुछ खास बातें। और दोस्तों, बात करें बरसात के मौसम की, तो बरसात के मौसम में मौसम कोई भी हो, बीमारियां तो दस्तक जरूर देती हैं। हर मौसम के साथ अलग अलग बीमारियां, गर्मियों के मौसम में गर्मियों की बीमारियां, बरसात के मौसम में बरसात से जुड़ी कुछ खास बीमारियां। तो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है हमारा खान पान, हमारा लाइफस्टाइल। अगर थोड़ा सा भी हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं आने। थोड़ा सा भी हम अपना ध्यान ना रखें तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो बरसात की बात करें दोस्तों, तो अक्सर दस्त बीमारी जो है हमें परेशान करती है। दूषित पानी व भोजन, बारिश के समय पीने का पानी अक्सर अशुद्ध हो जाता है जिससे आंतों में संक्रमण फैलता है। तो पानी का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो पानी हमें भरपूर मात्रा में पीना चाहिए, और जिस तरह से होता है कि थोड़े थोड़े समय के बाद हमें पानी की मात्रा को पूरा करते रहना चाहिए, तो उसी तरह से बरसात के मौसम में थोड़ा सा आप सभी देखते हैं फ्लड जो है वो नदियों नालों में जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो जो पानी जिसे डायरेक्ट सप्लाई होती है जिनके घरों में, तो अक्सर हम कई बार डायरेक्ट सप्लाई से ही पानी पीते हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा सा फिल्टर करके या फिर बावड़ियों से पानी जो कि बहुत स्वच्छ और जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं, जो कि आज के समय में देखने को ही नहीं मिलती हैं, लोग उन्हें प्रेफर ही नहीं करते क्योंकि आजकल तो प्योरीफायर हैं, फिल्टर हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध पानी जो कि बावड़ियों का पानी, तो उन्हें अहमियत हमें ज़रूर देनी चाहिए। ना फ्रिज की ज़रूरत होती है उस पानी के लिए, ना तो कुछ, क्योंकि फ्रिज का पानी भी हमें कहीं ना कहीं बीमारी का घर होता है ना, क्योंकि हर किसी का जो स्वास्थ्य एक तरह से एक जैसा नहीं होता है, हर किसी की हेल्थ एक तरह से जो है उन्हें नहीं प्रेफर कर पाती है।
यानी कि बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। तो कईयों को फ्रिज के पानी से बहुत जल्दी जो है वो सर्दी जुकाम भी हो जाता है, गला खराब हो जाता है, तो वो भी बीमारियां हैं। तो दोस्तों एकमात्र पानी की हम बात करें तो बॉडियों के पानी को हम उस अहमियत को समझें तो उन्हें साफ सफाई रख कर, हमें पता है बरसात का मौसम है तो पहले के समय में जो बुजुर्ग थे ना दोस्तों, तो वो वैसे ही करते थे कि जैसे ही मौसम का पता चला कि नहीं अब बरसात का मौसम आने वाला है तो साफ सफाई पूरी अच्छे से अपने घरों के आसपास पूरा घास वगैरह काट के और बॉडियों को साफ सुथरा रख कर उन्हें कवर करके कि ताकि उनमें उस पानी में कोई गंदगी ना जाए, कोई गंध ना फैलाए, ताकि वो पीने लायक रहे। और लोगों को पता भी होता था, और अब के समय में जो है लोग ज़्यादा दूषित करने में अपनी अहमियत निभाते हैं, लेकिन सफाई की हम बात करें तो समय नहीं होता। तो अगर अपनी हेल्थ को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो समय तो निकालना पड़ेगा, समय होता नहीं है, समय हमें निकालना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत सारी बातें होती है लेकिन क्या करें, थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक देना भी ज़रूरी है, नहीं तो आप सोचेंगे कि बातों से ही हम पक जाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आइए दोस्तों इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत, क्योंकि अभी बरसात के मौसम से जुड़ी बीमारियों की शुरुआत हुई है और बातचीत की भी शुरुआत हुई है। तो अभी तो आप जानेंगे और कौन कौन सी बीमारियां, ये किस तरह से इसके लक्षण रहते हैं, दस्त की हमने बात की है तो उसके लिए कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं, किस तरह से हम सावधानियां बरत सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक तौर पे हो चाहे वो घरेलू नुस्खे हों, वो हम सारी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले इंजॉय करेंगे कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

201.9 बेल्ट ओमेगा हर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इंजॉय कर रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला। तो आइए दोस्तों इस बातचीत को सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को कुछ खास जानकारियों की और। जी दोस्तों, तो आप सभी को बता दें कि हिमाचल प्रदेश के समर वेकेशन वाले स्कूलों में एक माह का अवकाश रहेगा। राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक मानसून अवकाश का कार्यक्रम जारी हो गया है। शिक्षा विभाग के तय शेड्यूल के अनुसार प्रदेश इन स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक एक माह की छुट्टियां रहेंगी। विद्यार्थी और शिक्षक नियमित कक्षाओं से अवकाश पर रहेंगे। प्रदेश में हर वर्ष जो है वो बरसात के मौसम को देखते हुए समर वेकेशन स्कूलों में जुलाई अगस्त के दौरान मानसून अवकाश दिया जाता है और ऐसे में सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है दोस्तों, बिल्कुल, क्योंकि बरसात के मौसम में आप सभी जानते हैं कि जब बहुत तेज बारिश हो जाती है तो बच्चों को आना जाना मुश्किल हो जाता है स्कूल तक पहुंचना, क्योंकि कई बच्चे जो हैं वो नदी नालों को क्रॉस करके जो है वो स्कूल पहुंचते हैं, चाहे वो शिक्षक हों चाहे वो बच्चे हों। तो नदियों का पानी तो आप सभी जानते हैं कि तेज उफान पे होता है बरसात के समय में, तो ऐसे में जान जोखिम में डालने वाली बात होती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वेकेशंस जो है वो दी जाती हैं। तो बिल्कुल, तो एंजॉय कीजिए अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ खास पल। यही समय होता है, बोलते समय नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये समर वेकेशन एक समय ही है, बस हमें बहाना चाहिए होता है। कहते हैं ना, जब मन हो रिश्तों को निभाने का, उन्हें अपनापन देने का, समय देने का, तो समय नहीं देखा जाता, बस एक बहाना देखा जाता है या तो खुद ब खुद बना लिया जाता है। तो बिल्कुल, यही प्यार और अपनापन हर किसी रिश्ते में होना जरूरी है। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से 91.9 मेगाहर्ट्ज़ से।

गीतों से प्यारे प्यारे से गीत और प्यारे प्यारे से जानकारियों और बातों का सफर हमारे दिन को और भी खास बना देता है और भी प्यारा बना देता है। ये उम्मीद आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिरा कर रही है। बाकी आप सभी अच्छे से जानते हैं कि खास बनता है या फिर बहुत खास बनता है, आप बताइए। जानते हैं बिल्कुल अच्छा ही होता होगा, चलो बहुत खास नहीं तो अच्छा तो हो ही जाता होगा। बिल्कुल दोस्तों, तो आइए अपनी इस बातचीत के सफर को थोड़ा और आगे की ओर लेकर चलते हैं। और बरसात के मौसम की हम बात कर रहे हैं तो बरसात के मौसम में बीमारियों के साथ साथ डर भी हमारे मन में सता जाता है। कौन सा डर बताइए? बिल्कुल सही पहचाना दोस्तों आप सभी ने, यही डर तो सताता है कि बरसात के मौसम में ज़्यादातर सांपों का डर रहता है कि कहीं गलती से भी हमारे सामने ना आ जाए, नहीं तो फिर बस वहीं ऐसे होश उड़ जाते हैं, शॉक लग जाता है एकदम से। तो वो शॉक किस तरह से लगता है, बहुत खतरनाक वाला लगता है ना, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों। लेकिन अक्सर कहा जाता है कि सांप जो है वो मतलब कि किसी मोटिव से नहीं डसते हैं, उन्हें भी डर लगता है कि कहीं हम उन पे अटैक ना कर दें, बस इसी वजह से जाने अनजाने में वो हमें अपना शिकार बना लेते हैं। तो यही सब बातें होती है। और दोस्तों इसी खास मौके पर यानी कि बरसात के मौसम पे आप सभी को बता दूं कि आज का दिन बहुत खास रहने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज 12 बजे आप सभी एक खास कार्यक्रम सुनने वाले हैं। बरसात के मौसम में सांपों के डर से कैसे बचा जा सकता है, यानी कि किस तरह से अपनी थोड़ी सी सावधानी जो है वो रखी जा सकती है जिससे हम खुद को बचा सकते हैं। तो आप सभी जुड़ेंगे विजय जी के साथ जो कि प्रोग्राम को होस्ट करेंगे, और डॉक्टर जयदीप मेनन के साथ और डॉक्टर उमेश भारती जी के साथ। तो ये बहुत ही खास कार्यक्रम आप सभी 12 से लेकर 1 बजे तक एंजॉय करने वाले हैं ये खास बातचीत। तो सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा दोस्तों, आज यानी कि बुधवार को 12 से 1 और इसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगे शनिवार को 12 से 1 बजे, है ना। तो ये बरसात के मौसम में हमें सावधानियां, और जब एक डॉक्टर हमें सावधानियां बताएंगे किस तरह से हम खुद को सतर्क रख सकते हैं, बचा सकते हैं, और कौन कौन सा जो डर है वो भयानक सा हो सकता है, बहुत ज़्यादा खौफनाक हो सकता है, तो यही सब जानने के लिए आप सभी को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही। तो बिल्कुल आइए इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, कभी कभी इंसान की आवाज ही उसके दिल का हाल बता देती है। वो खुलकर ये नहीं कह पाता कि अब वो आपसे दूर रहना चाहता है, लेकिन उसके बात करने का तरीका, लहजा और व्यवहार ये एहसास करा देते हैं कि अब आपके होने से उसे सुकून नहीं बल्कि बोझ महसूस होने लगा है। ऐसे समय में जबरदस्ती किसी रिश्ते को थामे रखना न प्रेम होता है और ना ही सम्मान। सच्चा अपनापन किसी को बांधकर रखने में नहीं बल्कि उसकी इच्छा का सम्मान करने में है। याद रखिए, जीने का अधिकार सबको है और अपनी पसंद की जिंदगी चुनने का अधिकार भी। यदि किसी रिश्ते में आपको मौजूदगी जो है वो आपकी किसी के लिए बोझ बन जाए, तो उसे बिना कटुता और बिना शिकायत के उस रिश्ते से मुक्त कर देना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान और सबसे बड़ा प्रेम है। क्योंकि जो रिश्ते दिल से निभाए जाएं वही खूबसूरत होते हैं, और जो मजबूरी से निभाए जाएं वो धीरे धीरे दोनों की खुशियां छीन लेते हैं। जी दोस्तों, और वो रिश्ते अक्सर जो है वो ज़्यादा समय तक रह भी नहीं पाते, टिक भी नहीं पाते, या फिर उनमें फिर ताउम्र जो है वो लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, नोकझोंक चली ही रहती है। मतलब सुकून जो है वो उन रिश्तों में कहीं खो सा जाता है। तो हम एक सुकून के लिए ही तो ज़िंदगी में कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून ना मिल पाए तो उन रिश्तों को वहीं छोड़ देना हमारे लिए बेहतर रहता है।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। तो आइए इसी प्यारे से गीत के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कुछ खास जानकारियों की ओर, क्योंकि हमारी बातचीत कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है बिना जानकारी के। दोस्तों प्रदेश की स्मार्ट सिटी धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्रों में सफर करना अब न केवल आसान होगा बल्कि आम जनता की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। महानगरों में चलने वाली ओला और उबर जैसी नामी कंपनियों की तर्ज पर अब कांगड़ा घाटी में किलिक्स ऐप आधारित टैक्सी सेवा ने दस्तक दे दी है। इस स्वदेशी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें यात्री अपने गंतव्य का किराया खुद तय कर सकेंगे। इस नई डिजिटल पहल से स्थानीय लोगों, छात्रों और देश विदेश से आने वाले हजारों पर्यटकों को अब टैक्सी के मनमाने किराए और मोल भाव से स्थायी मुक्ति मिलेगी। क्लिक्स ऐप के विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, छोटे शहरों और यहां की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। जी दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से जीरो कमीशन के सिद्धांत पर काम करता है। अन्य कॉर्पोरेट कंपनियों के विपरीत ये ऐप चालकों से कोई कमीशन नहीं वसूलता। तो बहुत ही खास बात है दोस्तों ये, और बहुत ही खास जानकारी है जो कि आप सभी तक पहुंचाई गई। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा गीत, मस्त मगन। मन मस्त मगन हो जाए तो फिर सचमुच जिंदगी में हर पल प्यारा हो ही जाता है, क्योंकि मन ही तो है जो कि मानता ही नहीं है। कभी यहाँ भटक रहा होता है तो कभी वहाँ भटक रहा होता है, न जाने कहाँ कहाँ भटकता ही रहता है और हमें भी उलझाए रखता है। समझ नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। खैर, हमें बिल्कुल भी नहीं भटकना है, और आप भी यही सोच रहे होंगे कि रुचिका भी कहीं ना कहीं भटक गई है, क्योंकि हम बात कर रहे थे बरसात के मौसम में जैसे दस्त बीमारी जो हम फेस करते हैं और उससे किस तरह से हम बचा जा सकता है, या क्यों होते हैं ये, क्यों बरसात के ही मौसम में होते हैं। तो सबसे पहले तो हमने बात की दोस्तों कि जो दूषित पानी या भोजन, उसकी वजह से हमें ये फेस करना पड़ता है। साथ ही बात करें वायरल संक्रमण, नमी और मौसम के बदलाव से वायरल बैक्टीरिया जो है वो तेजी से फैलते हैं। कमजोर पाचन शक्ति, आयुर्वेद के अनुसार बरसात में जठराग्नि कमजोर हो जाती है जिससे दस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। सड़क का खाना, खुले में रखा बासी या तला भुना भोजन पेट खराब कर देता है, लेकिन अक्सर हम बरसात के मौसम में तला भुना खाना बहुत पसंद करते हैं, या बाहर का खाना। अस्वच्छ आदतें, हाथ धोए बिना खाना या दूषित बर्तनों का प्रयोग, तो उससे भी हमें इस चीज को फेस करना पड़ता है। और इसके क्या क्या लक्षण रहते हैं दोस्तों, बार बार जो है पतला मलाना, पेट में ऐंठन और दर्द, शरीर में कमजोरी, डिहाइड्रेशन, प्यास लगना, चक्कर आना, भूख ना लगना, तो ये इसके एक तरह से लक्षण हैं। और अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टिकोण की बात करें तो आयुर्वेद में दस्त को अतिसार कहा गया है। ये मुख्य रूप से वात, पित्त और कफ दोषों के असंतुलन से होते हैं। अधिक गैस और पेट दर्द, जलन व दुर्गंध युक्त दस्त, चिपचिपा और भारीपन वाला, बरसात में पित्त और कफ दोनों बढ़ते हैं, इसलिए इस समय दस्त जो है वो अधिक होते हैं। अब घरेलू नुस्खों की हम बात करें दोस्तों, तो दही और भुना जीरा, दही में नमक और भुना जीरा मिलाकर खाने से आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बढ़ते हैं और दस्त जो है वो जल्दी रुक जाते हैं। अनार के छिलके का काढ़ा, अनार के छिलकों को सुखाकर उबाल लें, ये आंतों की सूजन और संक्रमण को कम करते हैं। धनिये वाला पानी, तो ये बीज जो है रात भर हम पानी में अगर भिगो कर रख कर सुबह छान कर पीने से जो है वो पाचन सुधरता है। और धनिये के पानी की हम बात करें तो ये थायराइड जिनको होता है तो उनके लिए भी बेहतर रहता है। अगर हम शाम को सोते समय धनिये को पानी में रखते हैं और सुबह जो है उठते ही उस पानी को पी लें तो थायराइड के लिए भी ये बेहतर जो है साबित होता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे जो है नुस्खे हैं जो कि हम अपना सकते हैं। और दोस्तों, खास करके बरसात में उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी, और वैसे तो मैंने आपको बताया अगर आप जो बावड़ियां हैं उनका पानी पिएंगे तो आपको ना अवॉइड करने की ज़रूरत है और ना फिल्टर करने की ज़रूरत, ना फ्रिज में रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सा प्योर शुद्ध ठंडा पानी, पहाड़ियों से निकला हुआ पानी कितना अच्छा होता है ना, तो वो पियेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सड़क का खाना और बासी भोजन ना खाएं, खास करके बरसात के मौसम में। भोजन से पहले और बाद में जो है वो हाथ अच्छी तरह से धोएं। हल्का सुपाच्य और ताजा खाना ही खाएं। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए जीरा, अजवाइन और सौंफ का प्रयोग करें। दोस्तों, बरसात में दस्त एक आम समस्या है, लेकिन समय पर ध्यान देकर और आयुर्वेदिक नुस्खों को अपनाकर इसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। आयुर्वेद न केवल त्वरित राहत देता है बल्कि पाचन शक्ति को भी मजबूत करता है ताकि बीमारी दोबारा ना हो। तो कौन चाहता है कि बीमारी दोबारा हो? कोई नहीं चाहता। ऐसे तो मन करता है कि हमें ये बीमारी हो जाए तो काश हमें थोड़ा सा बेड पे सोने के लिए समय मिल जाए, हम आराम कर सकें। लेकिन जब बीमारी होती है ना, तब मन करता है कि कब जैसे ठीक हो। सबके साथ होता है ना ऐसा, ये किसी किसी के साथ होता है। खैर, हर किसी की अपनी अपनी कहानी है दोस्तों, अपना अपना एक नजरिया है। तो बीमारी कोई भी अच्छी नहीं होती है, ये दूसरों को देखकर ही अच्छी लगती है कि नहीं ये आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, काश हमें भी ऐसा हो। लेकिन जब खुद को फेस करनी पड़ती हैं वो चीज़ें तो वाकई बहुत मुश्किल होता है। तभी कहते हैं कि दूसरों को कहने से पहले पहले उस दुख दर्द को थोड़ा समझ कर देखिए, महसूस करके देखिए, तब जान पाएंगे कि दूसरा इंसान कितने दर्द में है।
तो फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से लेकर चलते हैं आप सभी को एक और प्यारे से खूबसूरत से गीत की ओर। तो एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट से।

दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया, आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का ये बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम का सफर आप सभी ने एंजॉय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो बहुत ही कुछ खास बातें दोस्तों, चाहे फिर वो बच्चियों के साथ गलत हो रहा हो, चाहे वो बच्चों के साथ यानी कि लड़कों के साथ गलत हो रहा हो, गलत तो गलत है लेकिन जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे तब तक वो गलत गलत नहीं सही गिना जाएगा। तो अभी इधर कांगड़ा की भी हम एक बात करें दोस्तों, तो एक बच्चा जो कि हॉस्टल में रहता था मे बी, और बच्चों के प्रताड़ना से उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली यानी कि सुसाइड कर लिया। तो कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दे रहे हैं बच्चों को, या तो इतना लाड़ प्यार दे के बिगाड़ रहे हैं कि वो किसी की भी जान लेने से पहले एक बार नहीं सोच रहे, या किसी के साथ गलत करने से पहले एक बार नहीं सोच रहे। तो जब तक इस गलत को सही जवाब नहीं दिया जाएगा, सही नाम नहीं दिया जाएगा, तब तक ये गलत इसी तरह से बढ़ता रहेगा और न जाने एक दिन ये गलत कौन सा भयानक रूप ले लेगा और न जाने कितने घरों को अपना शिकार बनाएगा। तो जिस इंतज़ार को आप कर रहे हैं कि जब हमारे घर पे बात आएगी तब देखा जाएगा, अभी बाहर समाज की बात है, देश की बात है, तो हम क्यों ही आवाज़ उठाएं, क्यों लोगों के सामने बुरे बने। तो ये जो बुरे बनने के चक्कर में आप इस इंतज़ार में बैठे हैं, तो इससे अच्छा है कि आप ये प्रे करें कि हम तक पहुंचे ही ना, और हम अपने घर तक पहुंचने से पहले इसे रोक दें या इस पे काम करें, और वो काम एकजुट होकर एक दूसरे का साथ देकर किया जा सकता है। लेकिन जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना दोस्तों कि ये दुश्मनों का बेटा है या बेटी है या दुश्मन है और ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, तो ये बच्चों के साथ गलत होता रहेगा इसी तरह से। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये बहुत ही खास बातचीत आप सभी को पसंद भी आई होगी और आप सभी ज़रूर इस पे सोच विचार करेंगे ताकि आने वाले समय में क्राइम को कम किया जा सके, इन घटनाओं को कम किया जा सके। तो अब समय हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात आप सभी के साथ एक नई बातचीत, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और इंजॉय करते रहिए अपना मनपसंद

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखा। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB, TB हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

0: जवाब। अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
1: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
2: अरे तेरी की भूला।
0: कहना कहना
3: क्या?

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है। अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
3: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
6: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
7: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
8: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
5: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी

0: जनगणना में भागीदारी।
1: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
2: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
3: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
4: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
3: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
4: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
3: है?
4: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
6: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
5: बात तो सही है।

नमस्कार, रेडियो गुंजन में आप सबको स्वागत है। हम बहुत ही विशेष कार्यक्रम आपके मध्य लेकर आए हैं और बहुत ही विशेष महानुभावों के साथ लेकर आए हैं। बरसात का मौसम आ गया है और जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो जब हम घर के अंदर दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं तो थोड़ा सा सिहरन होती है, डर होता है, भय भी होता है। जब हम खेतों में जाते हैं घास काटने के लिए या किसी और काम के लिए, तब भी थोड़ी सी झिझक होती है, वहम होता है, डर होता है कि कहीं सांप तो नहीं है। जी हाँ, हम सांप की बात कर रहे हैं। बरसात का मौसम तो मतलब सांपों की आपदा, सांप काटने की आपदा, बहुत बड़ी आपदा है। और ऐसे में कब सांप काट लेगा और सांप काटने के बाद क्या क्या खतरे हम सब पे आ जाएंगे, इसका इल्म नहीं होता है, इसका पता नहीं होता। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं और बड़े महानुभावों के साथ बातचीत करने वाले हैं। तो पहले अपने महानुभावों का परिचय आप सबके साथ कराते हैं जिनके साथ आज हम चर्चा छेड़ने वाले हैं। आज हमारा सौभाग्य कि हमारे स्टूडियो में हिमाचल प्रदेश के ही नहीं, देश के बड़े एक्सपर्ट जो सांप काटने के मुद्दे के ऊपर काम कर रहे हैं, इसके इलाज के लिए काम कर रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं, वो महानुभाव आज हमारे गुंजन रेडियो के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। हमारे सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहूंगा डॉक्टर जयदीप मेनन जी का। डॉक्टर मेनन न केवल हिंदुस्तान के बड़े एक्सपर्ट,

0: बल्कि WHO को जो एक्सपर्ट पैनल है उसके भी मेंबर है, उसके भी सदस्य हैं, तो पूरी दुनिया में इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं डॉक्टर मेनन, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: हम साथ ही स्वागत कर रहे हैं इस मुद्दे पर काम करने वाली एक ऐसी शख्सियत जो कि हिमाचल प्रदेश में सरकार में हेल्थ डिपार्टमेंट में एक्चुअली डेप्टी डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं, बल्कि जिन्होंने कुत्तों के काटने के इलाज के ऊपर बहुत बड़ा प्रोटोकॉल बनाया जिसको WHO ने रिकमेंड किया और उसके ऊपर उनको पद्मश्री का एक रुतबा भी मिला है। मेरा आशा है डॉक्टर उमेश भारती जी से। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सर। बरसात का मौसम है, डर बहुत है। डर इस बात का भी है कि कहां से सांप निकल जाएगा और हमको डस न ले, हमारे बच्चों को न डस ले, या घर में रहने वाले जो बुजुर्ग उनको न डसते। तो डॉक्टर मेहनत आपसे शुरुआत करते हैं, क्या ये जो डर है हमको जितने भी सांप होते हैं सबसे डरने की जरूरत है, या लगता है कि कुछ डसने वाले या जो आप कहते हैं कि किलर टाइप के जो सांप होते हैं अलग होते हैं?
1: डरने की तो जरूरत है नहीं, सांप हम तो उनके प्रे तो है नहीं, सांप तो हमें तो खाएंगे नहीं, तो डसते अगर है डर से डसते, इसी की वजह से आदमी काटा जाता है। तो हम केयरफुल अगर रहे तो ज्यादातर स्नेक बाइट हम प्रिवेंट ही कर सकते हैं। तो ये सिचुएशंस जहाँ पे स्नेक बाइट हो सकती है वो हम जाने, उसी से प्रिवेंशन हो सकता है। तो घर के समीप घर के अंदर भी स्नेक बाइट हो सकता है, ज्यादातर स्नेक बाइट इसी कुछ सिचुएशंस में ही होता है। अगर हम ये फायरवुड वगैरह घर के समीप
0: लकड़ियां
1: जो रखते हैं स्टैक करके रखते हैं उसके अंदर में सांप बैठने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अगर लकड़ी रखते भी हो तो घर से दूर ही रखना चाहिए, वॉल्स के समीप न रखें तो अच्छा, एस्पेशली अगर छोटे बच्चे हो तो वही खेलेंगे तो ही दैट इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन ऐसे स्नेक बाइट होने का। दूसरी अगर अनाज था खेती जो फार्मिंग कम्युनिटीज में है तो वो अनाज अगर सैक्स वगैरह घर के अंदर स्टोर करें और फ्री ग्रेन्स, अपनी जगह केरल से मैं आता हूँ वहां तो कोकोनट रखते हैं घर के अंदर, बहुत सारी कोकोनट्स, हजार कोकोनट्स होते हैं, तो उसके अंदर सांप बैठने के साधन चांसेस बहुत बहुत हाई है। तो ऐसी सिचुएशंस हम अगर प्रिवेंट करें, प्रिवेंट तो कर नहीं पाएंगे, तो धान तो रखना ही है, सैक्स तो रखना ही है, लेकिन अगर उस रूम के अंदर जाते वक्त अगर लाइटिंग अच्छी हो, नहीं तो टॉर्च अगर हाथ में हो, यानी ये वो ज्ञान होना चाहिए कि यहाँ सांप हो सकता है, उसी से हम बच सकते हैं कि स्नेक बाइट ना हो, प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा घर के समीप जो है जो पाथवेज अगर ग्रास वगैरह हो वहाँ सांप छिपने रहने की संभावना बहुत ज्यादा है, वो क्लीन अगर रखें तो डेफिनेटली वो एक प्रकार की उस रूप से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बहुत सारी घरों में ऐसी हिमाचल जैसी जगह में लॉट्स ऑफ ट्रीज जहाँ पे हो घर के अंदर सुंदरता के लिए हम ऑर्नामेंटल ट्रीज वगैरह ग्रो करते हैं, कई बार ऐसा हुआ है कि ट्री ओवरहैंगिंग ब्रांचेस होती है जो फर्स्ट फ्लोर चला जाता है, सो सम स्नेक्स एक्चुअली रीच थ्रू द ओवरहैंगिंग रूफ्स। दूसरी जो है अर्बन एरियाज में एम्प्टी प्लॉट्स बहुत सारे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन ना हो, दोज एस्पेशली रेसिडेंशियल एरियाज में भी हो सकता है, वहाँ भी सांप ठहरने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मैं अगर समराइज करता हूँ, सांप अगर घर में घुसता है कुछ कारण से ही घुसता है, एक तो होगा कि अनाज आप घर के अंदर रखे हो, नहीं तो क्लीनलीनेस ना हो, उससे चूहे आ सकते हैं, उनके प्रे के
0: फूड जो है
1: उसी को देख के सांप अंदर आता है। तो इफ यू कीप योर प्रीमाइसेस क्लीन सो दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ प्रिवेंटिंग स्नेक बाइट।
0: सांप से बचने का जो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है कि सांप वहीं आएगा जहां अगर लकड़ी का ढेर होगा तो वो उसको जगह बहुत अच्छी लगेगी रहने के लिए, छुपने के लिए, बारिश से बचने के लिए। दूसरा कहा कि अगर घर में कहीं अनाज रखा हुआ है या चूहे घर में घूम रहे हैं तो चूहे चूंकि उसका खाने के लिए सांप का सबसे फेवरेट आहार है तो चूहे के चक्कर में भी सांप घर में आ सकता है। तो अगर हम ऐसी चीजों से बचते हैं तो सांप हमारे घर में एंटर नहीं करेगा। डॉक्टर साहब ने दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक और बोली है कि सांप जनरली आदमी से डरता है एक्चुअली, तो ऐसा नहीं है कि आदमी के ऊपर अटैक करेगा।

0: पति आपसे जानना चाहेंगे कि सांप की साइकोलॉजी ह्यूमन को लेके क्या रहती है, कि जो फियर फैक्टर रहता है सांप आदमी से डरता है या आदमी को सांप से डरना चाहिए?
1: नहीं देखो, सांप का अपना इकोसिस्टम है
0: जी।
1: वो यदि घर में घुस रहा तो उसको ऐसा कुछ पता नहीं है कि आदमी का घर है, वो तो उसको तो अपने प्रे के लिए कहीं भी चले जाना है तो वो तो अपने प्रे के पीछे चल रहा है। तो ये हम सोच रहे हैं कि सांप घर में आ गया तो ऐसा
0: वो मेरे लिए आया घर में, वैसा नहीं,
1: ऐसा नहीं है, वो तो अपने प्रे के लिए,
0: अपने फूड के लिए,
1: फूड के लिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और सांप हमने देखा है कि मोस्टली सांप जो है वो ह्यूमन को, ह्यूमन उसको मालूम है कि ये प्रे नहीं है मेरा
0: जी।
1: तो ज्यादातर स्नेक बाइट तब होता है जब उसको वो हम कहीं गलती से छू जाते हैं,
0: उसको खतरा लगता है कि हाँ, अटैक
1: तो अटैक तब तो उसको लगता है मुझे पकड़ रहे हैं या मेरे छू रहे हैं। तो वो कभी घास काटते हुए हाथ लग गया उससे तो काट लेगा
0: जी।
1: या चलते हुए पैर आ गया तो पैर में काट देगा। या एक सांप जो है क्रेट
0: जी,
1: वो जरूर जो है वो अपनी एक चूहे के पीछे समझो या हीट के लिए समझो, वो जरूर घरों में घुस जाता है हीट के चक्कर में। और वो कई बार रजाई में भी घुस जाता है, सोई सोई को काट लेता है और बड़ा डेंजरस है। मतलब उसके क्रेट के काटने का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि उससे केवल दांतों के काटने के निशान नहीं होते और वो उसकी दर्द नहीं होती, उसकी कोई स्वेलिंग नहीं होती। तो बच्चों के खास करके बहुत बार सुना हमने कि बच्चा रात को सोया था और सुबह जो है वो मरा हुआ मिला, तो क्या बोलते हैं नीला फिर गया या इस तरह से साइनोसिस हो गया। तो वो मोस्टली क्रेट बाइट होता है और क्रेट बाइट हमारे यहाँ बहुत है, कांगड़ा वैली में बहुत ज्यादा है। तो मैं ये कहूंगा कि वो एक स्थिति ऐसी है जहां पे हम कह सकते हैं कि वो गलती से आदमी को काटता है शीट की वजह से। तो अपने घरों में हम जो है दहली, आज दहलीज नहीं बनाते, दहलीज बना के रखें
0: हाँ जी।
1: और उसमें जगह कम रखें ताकि सांप ना घुसे,
0: एंटर
1: ना कर सके। दूसरा ये कि अपने मच्छरदानी लगा के सोएं चारों तरफ टक करके ताकि वो बेड पे ना चढ़ सके, बेड पे चढ़ जाता है। और तीसरा ये कि लाइटनिंग थोड़ी बहुत अपने घर में रखें, बिल्कुल अंधेरा करके ना सोएं ताकि जब आप उठो तो कमी ऐसा ना हो कि कहीं क्रेट चल रहा है या कोई दूसरा सांप चल रहा है, आपने गलती से पैर रख दिए। या नगरोटा में हुआ ऐसा
0: हाँ जी, हाँ
1: कि रात को 10 बजे जो है लड़का जो अमेरिका से आया था
0: हाँ जी,
1: तो वो अमेरिका से आया था और वो पानी लेने उठा तो पानी के जहाँ पानी रखा था उसके साथ ही एक जुवेनाइल क्रेट था, तो पानी लेते हुए उसने पैर रख दिया और उसको काट दिया। ये लग बात है कि वो ठीक से निशाना लगा नहीं और वो ड्राई बाइट हो गया, अदरवाइज तो वो जो अमेरिका से यहाँ अपने पेरेंट्स से मिलने आया था तो एक और ही हादसा हो सकता था। तो इसलिए मैं कहता हूँ क्रेट से बचने के लिए हम जरूर उपाय करें, बाकी दूसरे सांप तभी काटते हैं जब हम उनको छू जाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, ये जो सांपों का प्रकोप है ये बरसात में ही ज्यादा क्यों होता है, ये भी थोड़ा आप हमारे श्रोताओं को समझाएंगे?
1: देखिए, बरसात में इनके जो छिपने की जगह सारी फ्लड हो जाती है, इधर से उधर भागते हैं कहीं और नई जगह की तलाश में, तो इसलिए ये जमीन में, जमीन से बाहर आ जाते हैं। तो और बरसात में दूसरी जो इनके बाहर ज्यादा आने की वो है कारण है, वो बरसात में बहुत सारे मेंढक जो हैं फसलों में वो ब्रीड करते हैं तो उनको खाने के लिए भी उनका इजी फूड होता है
0: जी।
1: तो ये 2-3 महीने में अपना पूरा करके कोटा उनको खा के अपना फैट बढ़ा लेते हैं, फिर हाइबरनेट कर देते हैं। तो वो भी एक रीजन है, 2 रीजन से जो है वो ज्यादा करके इस सीजन में सांप ज्यादा होते
0: जी। तो इसलिए बरसात के मौसम में हम सबको सचेत रहने की जरूरत है क्योंकि सांपों का प्रकोप ज्यादा होगा, अपने जिसे हम बिल कहते हैं वहां से निकल के बाहर आ जाते हैं।

0: डॉक्टर मेनन की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब आपसे थोड़ा और जानते हैं कि अगर कहीं सांप इंडिविजुअल का काट लेता है तो सबसे पहले इंडिविजुअल क्या करना चाहिए?
1: अगर काटता भी है अबाउट 80% ऑफ बाइट्स नॉन वेनमस हो सकता है, नहीं तो वेनमस स्पीसी से भी ड्राई बाइट हो सकता है। आपकी जो क्वेश्चन थी डॉक्टर उमेश के, दैट इज साइकोलॉजी ऑफ स्नेक्स। तो सांप जब काटते हैं तो दो प्रकार के काट सकते हैं, एक तो प्रेडेटरी बाइट ईट दैट इज, दूसरा है डिफेंसिव बाइट। प्रेडेटरी बाइट में सांप को पता है कितना वेनम ढसना है, तो प्रे के साइज के अनुसार वो वेनम ढसता है। वेनम ग्लैंड्स के राउंड में कुछ मसल्स है जो सांप के कंट्रोल में है, तो सांप एक अनुमान लगाता है तो इतना वेनम ढसना है, तो सी दैट इज द अमाउंट दैट द स्नेक एक्चुअली इंजेक्ट्स, बिकॉज इट नोज वेनम इज बहुत प्रेशियस होता है सांप के लिए। लेकिन डिफेंसिव बाइट में ऐसा नहीं, डिफेंसिव में जितना सारा वेनम है वो ढसता ही है। That is what happens when humans threaten a snake. Snake को अगर डर लगता है, if it feels threatened, तो ढसता है, that is called a defensive bite. उस defensive bite में venom की मात्रा बहुत ज्यादा होता है।
0: तो ये भी matter करते हैं कि सांप किस तरह से ढस रहा है individual को।
1: Absolutely. उसी की वजह से dry bites भी होती है, ज्यादातर cobra में होता है, cobra ढसता है, ये hood करता है, ढसता है, लेकिन वेनम नहीं इंजेक्ट करता, बिकॉज इट्स अंडर इट्स कंट्रोल।
0: तो अगर सांप डस लेता है तो डसने के बाद
1: 80% या तो नॉन वेनमस हो सकता है, नहीं तो ड्राई बाइट हो सकता है। 1 in 5 चांसेस है एनवेनमेशन का।
0: सो नॉन वेनम का मतलब ये है कि या तो सांप जहरीला हो सकता है या बिना जहरीला हो सकता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारती, मैं ठीक कह रहा हूँ?
1: तो उस नॉन वेनमस होने की संभावना 80% 4 out of 5 है। तो पहली बात यह कि डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर डरते हो हम, सर्कुलेशन ज्यादा होता है, बीपी ज्यादा हो सकता है, तो वेनम जो अब्सॉर्प्शन होता है वो भी ज्यादा हो जाती है। तो ज्यादातर स्नेक बाइट जो बच्चे में होते हैं, बच्चे जब काटे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो दौड़ते हैं, दौड़ने पर वेनम की अब्सॉर्प्शन बहुत ज्यादा होता है। तो पहली बात ये कि हम ना डरे, जस्ट रिलैक्स। सांप काटने पर कोई तो रिलैक्स तो होएगा नहीं, पर वो डर के मारे हार्ट बीट ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा होता है तो वेनम
0: उतनी तेजी से आगे फैलेगा बॉडी में। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली कि जैसे सांप डसता है तो डसने के बाद हम डर जाते हैं, डरने से हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हम तेजी से आगे पीछे भी भागते हैं। उससे जो जहर होता है सांप का बहुत तेजी से हमारे बॉडी में फैलता है और हमारे ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। डॉक्टर भारती, आप थोड़ा इस पर और प्रकाश डालिए कि किस तरह से सांप जब काटता है तो इंडिविजुअल के ऊपर प्रभाव डालता है।
2: सबसे बड़ा प्रभाव तो साइकोलॉजिकल है। सर ने कहा कि डरना नहीं, लेकिन डर जाता है।
0: डर जाता है जी।
2: और वही एक बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है कि जैसे मैं दोबारा बोलूंगा कि 80% सांप जो है वो जहरीले नहीं होते
0: जी।
2: तो मोस्ट कभी भी सांप है तो कट जाए तो मतलब 10 में से 8 times ये है कि वो जहरीला नहीं होगा। तो
0: लेकिन जहरीला नहीं होगा उसके भी नुकसान होने के चांसेस है, क्योंकि हम साइकोलॉजिकली डर गए।
2: हाँ सही बात। तो और यदि जहरीला है भी तब भी कोई भागने की इधर उधर जाने की अंग को हिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे काटा उसको इमोबिलाइज रखें, उसको हिलाएं नहीं और खुद भी ना चलें। ये नहीं कि मैं मेरे हाथ में काट दिया तो मैं पैरों से चल के जा रहा हूँ। कई बार ऐसे हुआ कि आदमी जो हॉस्पिटल चला गया अपना हाथ पकड़ के, तो उतना सर्कुलेशन आ गया कि वो जहर में जो है सर्कुलेशन में बहुत बुरी तरह से चला गया और फिर उसको बचाना मुश्किल हो गया। तो सांप काटने का जो सिस्टम है वो ऐसा ही है जैसे कि हार्ट अटैक का। हार्ट अटैक में हम बोलते हैं कि आदमी चले ना और इमोबिलाइज हो जाए और चले ना। तो सांप काट जाए तो औरों को बोलो कि वो 108 पे तो हम खुद भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वो सांप को इमोबिलाइज करें, मतलब कि स्थिर करें, हिलाएं नहीं और एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल ले जाएं।
0: तो ऐसा वैसा कहा जाता है कि जहां काटा है वहां को बांध देना चाहिए तुरंत करके,
2: या
0: काट देना चाहिए।
2: ना बांधना है, ना चूसना है, ना काटना है, कुछ नहीं करना उसको। सबसे बढ़िया फर्स्ट एड है कि कुछ भी मत,
0: पानी से भी नहीं धोना है,
2: कुछ भी नहीं करना, बस उस बाजू को जो है स्टेबलाइज करो या पैर को स्टेबलाइज करो, पैर में लेट जाओ और उसके वो बंदा कहीं जाए ना, व्यक्ति कहीं ना जाए और एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल जाए सीधा।
0: तो डॉक्टर साहब ये बहुत ही पते की बात बताइए जिसको हमको गांठ बांध लेना है कि अगर सांप कहीं काटता है तो काटने के बाद हमको रश नहीं करना है, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट जो हम पहले करते आए हैं उसको बांधना नहीं है, चूसना नहीं है, काटना नहीं है, कोई भी काम नहीं करना है, उसको एज इट इज ही रहने देना है। और उसके बाद डॉक्टर साहब क्या करना है, आप थोड़ा सा और गाइड करिए।
2: जिसमें कहा कि उसको कोई दूसरे आदमी जो है एम्बुलेंस में डाल के लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डाल के, लेफ्ट लेटरल यानी कि जो लेफ्ट साइड को लिटा के उसको हॉस्पिटल ले जाए। और हॉस्पिटल में इसका इलाज जैसे दो तरह के सिम्टम आ सकते हैं, या तो खून ज्यादा बहना शुरू हो जाएगा या उसको सांस में दिक्कत आएगी या आंख में आंख खोलने में दिक्कत आएगी, बोलने में दिक्कत आएगी, या इस तरह से कोई पैरालिसिस हो जाएगा। तो दोनों तरह के सांप होते हैं, एक हेमोटॉक्सिक होते हैं वाइपर्स, और जो क्रेट और कोबरा है वो होते हैं न्यूरोटॉक्सिक। तो यदि न्यूरोटॉक्सिक ने काटा है तो
0: आसान भाषा में बताइए न्यूरोटॉक्सिक का मतलब क्या होगा?
2: न्यूरोटॉक्सिक का मतलब यह है कि जो नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं
0: जी।
2: तो नर्वस सिस्टम में इफेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि हमारी आंख खोलने में मुश्किल होगी, हमें बोलने में
0: नींद आएगी, ड्रॉजीनेस होगी,
2: ड्रॉजीनेस होगी, हमें सांस लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये सारे न्यूरोटॉक्सिक यानी के जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको अफेक्ट करता है, तो वो कोबरा और क्रेट की वजह से होता है। और जो वाइपर्स हैं उनसे खून पतला हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है।
0: तो डॉक्टर साहब ये मान सकते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक कर रहे हैं और असर जिसका हो रहा है वो थोड़े से घातक टाइप के सांप है?
2: बिल्कुल, यदि आप समय से हॉस्पिटल ना जाओ, ऑक्सीजन ना लगे, एंटीसनिक विनम ना दिया जाए, तो कई बार तो आधे घंटे में या एक घंटे में मृत्यु हो जाती
0: है। और जो दूसरी तरह के सांप होते हैं वो कैसे होते हैं?
2: वाइपर में स्वेलिंग होगी, पेन होगी, वो थोड़ा टाइम मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी यदि आप नहीं ले जाओगे तो दो घंटे के बाद कभी भी मृत्यु हो, ब्लीडिंग से हो जाएगी, डेथ हो जाएगी
0: जी।

0: तो ये जो साइन और सिम्टम है श्रोताओं, इनको समझना बहुत जरूरी है। इनको नजरअंदाज करेंगे तो जोखिम हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। ये जो साइन और सिम्टम जो बॉडी में अपेयर होते हैं, डॉक्टर मैंने आपसे थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे सांप काटता है तो डॉक्टर ने बोला कि हमको इमीडिएट क्या करना है और किस किस तरह की बॉडी में इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन साइन एंड सिम्टम क्या क्या अपीयर होते हैं बॉडी में इमीडिएट सांप काटने के बाद?
1: डॉक्टर उमेश जैसे बोले
0: जी,
1: दो तरीके से होता है
0: जी,
1: एक तो ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस
0: जी,
1: दूसरी जो है न्यूरो पैरालिसिस यानी मसल पैरालिसिस हो सकता है
0: जी।
1: ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन ज्यादातर बाइट साइड से होता है, जहाँ सांप ढसे हुए हो वहां से एक बूंद रक्त निकलता जाता है, कई बार ब्लीडिंग बराबर ब्लीडिंग होती है, यूजुअली वो है फर्स्ट साइन। वहाँ थोड़ा स्वेलिंग भी हो सकता है, स्वेलिंग से ये मतलब है कि वेनम के वेनम के थोड़ा मात्रा में वेनम है, लोकल रिएक्शन वहाँ शुरू हुआ है। उसके अलावा ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन जो देखा जाता है, ज़्यादातर माउथ में ब्लड की टेस्ट होता है, उसके अलावा हमारे गम्स में ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है, कई बार स्ट्रोक हुआ है, आँखों में ब्लीडिंग हुआ है, हार्ट के समीप ब्लीडिंग हुआ है, लंग्स के अंदर भी ब्लीडिंग हो सकता है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग भी हो सकता है।
0: तो कभी डॉक्टर साहब हमको ये पता नहीं लगता है कि हमको किसने काटा है, हमको लगता है कहीं मच्छर काट गया या कुछ और काट गया, इंसेक्ट काट गया, लेकिन अगर इस तरह के सिम्टम्स निकल रहे हैं कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो हमको सीरियस हो जाना।
1: एब्सोल्युटली, ये तो ब्लीडिंग की अगर कोई चांस भी देखा, यूजुअली ब्लीडिंग होने के पहले ही वो बोलते हैं कुछ टेस्ट बदला हुआ टेस्ट है
0: जी।
1: ब्लड की देखने पर तो ब्लड दिखाई नहीं देता, उसके बाद ही ब्लीडिंग होता है। तो ऐसे अगर कुछ सिम्टम्स हो तो जरूर हॉस्पिटल जाना। इसके अलावा सांप काटने की अगर चांस भी होता है या सस्पिशन भी होता है, अस्पताल जाना ही बेहतर है। डॉक्टर उमेश जैसे बोले, न्यूरोटॉक्सिक यानी कोबरा क्रेट बाइट्स में एक या दो घंटे में न्यूरो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तक पहुंच सकते हैं। दैट डिपेंड्स वेनम की अमाउंट कितना अंदर चला है, तो समय नहीं होता है, तो घर में बैठ के अगर सिम्टम्स के लिए हम वेट करते रहे, कई बार न्यूरो पैरालिसिस रेस्पिरेटरी पैरालिसिस तक पहुंच सकते हैं। तो सांप काटने की अगर सस्पिशन कुछ चांस भी हो, अस्पताल नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचना ही ठीक है।
0: डॉक्टर साहब आप तो कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और जाने माने पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। कार्डिक हार्ट अटैक में हम बात करते हैं गोल्डन आर्स की, सांप काटने में गोल्डन आर्स क्या होते हैं, कितना
1: ही
0: उतना ही
1: न्यूरोटॉक्सिक स्नेक्स के लिए एक घंटा ही गोल्डन आर है। हेमेटोटॉक्सिक यानी वाइपर स्पीसीज पे कुछ और समय दे सकते हैं, 3-4 घंटे के अंदर,
0: लेकिन उसमें बॉडी में डैमेज होना तो शुरू हो ही जाएगा।
1: बिकॉज वेनम जो हम जब एंटी वेनम देते हैं, वेनम ऑलरेडी जाके फिक्स्ड अगर हो तो उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते, जो वेनम फ्री है ब्लड में उसी को न्यूट्रलाइज करते हैं एंटी स्नेक वेनम देके। तो अगर जा फिक्स हो चुका हो तो कुछ नहीं कर पाएंगे, 6 घंटे में तो फिक्स हो ही जाता है
0: जी। तो ये तो बात रह गई कि अगर सांप काटता है तो किस तरह के सिम्टम्स अपेयर होती हैं और किस किस तरह से हमको करना है। अब सवाल आता है कि अगर सांप काटने से हमको बचना है तो हमारा रोल क्या हो सकता है, हमारे परिवार का रोल हो सकता है, क्या हो सकता है, कम्युनिटी का रोल क्या हो सकता है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर भारती जी आपकी तरफ आते हैं, आप थोड़ा गाइड करिए और हमारे श्रोताओं का मार्गदर्शन करिए कि सांप बचने के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या है परिवार में और समुदाय में।
2: ये पहली जिम्मेवारी तो ये है कि हम ये समझें कि सांप हमारे आसपास ही है
0: जी,
2: तो उससे प्रिवेंशन जो है वो बहुत बड़ा एक इसका हिस्सा है, हमारा अपना और परिवार का भी
0: जी।
2: तो हम ये देखें, जैसे डॉक्टर मैंने ने कहा कि कोई सांप की जो सिचुएशन है कि कहाँ सांप छुप सकता है, ऐसी जगहें वो घर पे ना हो, लकड़ी के गट्ठे ना हो, अनाज का स्टॉक ना हो, ठीक है, और घर में स्पेस हो, घर में लाइट हो, सब जूते डाल के चलें, तो ये सारे जो मेजर्स हैं वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स है।
0: और दरवाजे में कहीं छेद ना हो,
2: दरवाजे में ज्यादा जगह ना छोड़ी हो, कहीं और ऐसी जगह ना हो जहाँ से सांप आ सकता अंदर।
0: और एक जो डॉक्टर मैंने ने कहा कि पेड़ ना ऊपर को झुके हुए हों,
2: झुके हुए ना
0: तो वहां से भी
2: टहनियों
0: से निकल सकता है।
2: तो ये सारी चीजें जो प्रिवेंशन जो है वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो यदि प्रिवेंशन रहेगी तो सांप से डसने से बचा जा सकता है। फिर भी यदि सांप ने डसी लिया, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इंदौरा में जो घटना हुई है कि वो एक लड़का जो है वो गौशाला में जाता है और वहाँ पत्तों में रसल वाइपर था और उसने उस पर पैर रख दिया गलती से, उसको इतना 3-4 बार उसने रसल वाइपर ने काटा और इतना जहर डाल दिया कि वो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच पाया। तो गौशाला में जाना भी एक रिस्क फैक्टर जो हमें नया पता लगा है कि गौशाला में भी अपने जूते डाल के,
0: और गौशाला उसके लिए सांप के लिए सबसे सेफ स्पेस है,
2: बिल्कुल,
0: क्योंकि गौशाला को हम उस तरह के दरवाजे भी नहीं लगाते हैं, ओपन स्पेस बहुत होता है, खिड़कियां ओपन होती है।
2: तो इस तरह की जो हम सीख रहे हैं अपने जो जिनकी डेथ हुई है उन लोगों से सीख रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रिवेंशन की हमें हम लें तभी बचा जा सकता।
0: तो ये किसान भाइयों के लिए और खास करके जो हमारे एग्रीकल्चर में फैमिलीज लगी हुई हैं, जिनके जो पशु पालने का काम कर रहे हैं, जो गौशाला में जिनका आना जाना रहता है, उनको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। गौशाला खास करके एक ऐसी जगह है जहां पर सांप के छुपने के, वहां जाने के बहुत ज्यादा संभावना। तो जब भी हमको गौशाला में जाना है, जूते पहन के जाना है, लाइट में जाना है, लाइट जला के जाना है और थोड़ा अलर्ट होके जाना है। तो ये डॉक्टर साहब बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने अगली बात कही है।

0: डॉक्टर साहब थोड़ा इलाज पे बात कर लेते हैं, अगर सांप काट जाता है इलाज कहाँ कहाँ मिल सकता है, अगर हम हिमाचल की बात करें या कांगड़ा की बात करें, कौन कौन से?
1: देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि इसका इलाज झाड़ फूंक तो है नहीं।
0: हाँ जी,
1: इसका इलाज हॉस्पिटल में एंटी स्नेक विनम, जो कि सांप का जहर से उसको घोड़ों में लगा के उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बनता है, तो एंटी स्नेक विनम ही एकमात्र इसका इलाज है। पहली तो बात यह है
0: जी।
1: दूसरी बात यह है कि जो जहां भी, जैसे मानो आपको कहीं यदि काट लिया है, आप हॉस्पिटल गए हो, तो 108 एम्बुलेंस आपको वहीं ले जाएगी जहां पे एंटी स्नेक विनम होगा,
0: ठीक
1: है। और तीसरी बात है कि हमें भी पता होना चाहिए कि कहां कहां सांप के काटे का इलाज होता है, कहां नहीं होता। अब मानो आप किसी PSC पे चले गए, वहां डॉक्टर ही नहीं है, तो यदि चले भी गए तो वहां इलाज कौन करेगा? तो ये रास्ते में एक कनेक्ट बना के रखना कि कहाँ जाना है, सही जगह पे जाना, ताकि टाइम वेस्ट ना हो
0: जी।
1: तो ये बड़ा जरूरी है ताकि वहां पे एंटी स्नेक विनम टाइम से मिल जाए, ऑक्सीजन टाइम से मिल जाए, एट्रोपिन स्टिगमिन के इंजेक्शन टाइम से मिल जाए। तो ये क्योंकि हमारे यहाँ न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट बहुत ज्यादा है, क्रेट का बहुत ज्यादा है, कोबरा का बहुत ज्यादा है, तो इस वैली में
0: जी।
1: तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें हमें अवेयर रहनी चाहिए, हमें अवेयरनेस रहनी चाहिए कि कहाँ कौन से हॉस्पिटल में इलाज होता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने एंटी स्नेक वेनम की बात की है, मतलब वो ये टीका फॉर्म में जाता है, टीका लगाना पड़ता है इसका, और ये जो टीका है एंटी स्नेक वेनम वाला, ये सारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिलता है या जिला अस्पताल में मिलता है या कौन सा
1: ये सब जगह है? लेकिन प्रोवाइडेड कई जगह हमारी, कई जगह
0: टाइम मैनेजमेंट है ना, हमारा टाइम वेस्ट ना हो तो लोग वहीं जाए जहाँ।
1: मोस्टली स्नेक बाइट जो है वो शाम को होता है
0: जी,
1: रात को होता है या अर्ली मॉर्निंग में होता है।
0: हाँ।
1: इतने में हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंद
0: हो चुके होते हैं,
1: ठीक है। तो मैं सोचता हूँ वहीं जाएं जहाँ की 24 आवर इमरजेंसी चल रही हो, ताकि टाइम से लगे। हम ये नहीं कर सकते सांप ने काट लिया, चलो अब प्राइमरी हेल्थ सेंटर जब खुलेगा तब जाएंगे। तो हमें तो तुरंत जो है जितनी जल्दी इलाज कराने के लिए ले जा सके उतनी जल्दी ले जाना है, और 108 को फोन करके तुरंत उसकी सहायता लेनी।
0: बहुत बढ़िया। तो श्रोता, एक चीज बहुत जरूरी है, अगर इस तरह की घटना, इस तरह का इंसिडेंट हमारे गांव में, हमारे घर में होता है, तो 108 को फोन करना सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि वो आपको वही लेके जाएंगे जहां एंटी वेनम होगी या यहां जहां इसका इलाज हो सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्टर साहब, कई बार हमारी प्रथा नहीं है, हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं कि जब सांप काट लिए तो सबसे पहले हम झाड़ फूंक करते हैं, या जो जिसे कहते हैं मुठ्ठा, ये अपना लो जो इस तरह की प्रथाएं हैं, मतलब और डोरी बांधना या कहीं जाके मत्था टिकाना मंदिर में जाके, उसको लेके आपका क्या मानना है कि वहां टाइम वेस्ट करना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
1: देखिए, हमने नूरपुर में एक छोटा सा एनालिसिस किया है, और वहाँ हमने ये पाया कि ज्यादातर के जो डेथ हुई है
0: जी,
1: वो ज्यादातर लोग जो हैं वो इस तरह की धार्मिक मान्यताओं के चलते, झाड़ फूंक के चलते वहाँ गए, टाइम डिले हुआ, और लेट जब उनको, जब झाड़ फूंक से ठीक नहीं हो तो उनको हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल भेज दिया तो जब एक बार विनम जो अटैच हो जाता है रिसेप्टर से, तो एंटी विनम काम नहीं करता। एंटी विनम सिर्फ फ्री, जब फ्री होता है जहर ब्लड में, उसी को न्यूट्रलाइज करता है। तो जब लेट पहुंचे हैं तो एंटी स्नेक विनम लगाने के बावजूद जो है वो उनको बचाया नहीं जा सकता। आज भी हमारे सम्मेलन में, आज जो सम्मेलन था उसमें एक डॉक्टर ने ही पूछा बल्कि कि हमने एंटी स्नेक विनम भी लगाया तब भी वो बचा नहीं। तो ऐसी परिस्थितियां जहां पे डिले हो जाता है उसमें एंटी स्नेक विनम लगाने के बावजूद भी बचना मुश्किल होता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप अपना आस्था रखिए, जो भी आप जिसको भी मानते हो, लेकिन इसका इलाज एंटी विनम में तुरंत हॉस्पिटल।
0: तो श्रोता, ये बहुत ही पते की बात डॉक्टर साहब ने बताई है कि हमारी मान्यता हो सकती है, हमारी आस्था हो सकती है, लेकिन जब जिंदगी की बात है तो समय वेस्ट नहीं करना है। इसका जो असल में इलाज है और जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हुआ है, जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, वो एंटी स्नेक वेनम है, यानी वो टीका लगाना है, और टीका हॉस्पिटल में जाके लगेगा, ट्रेंड और एक्सपर्ट डॉक्टर के पास लगेगा। तो किसी भी तरह का टाइम वेस्ट मत करिए। जैसा डॉक्टर मेनन भी कह रहे थे, ये जो गोल्डन आवर है, जैसे हार्ट अटैक के लिए गोल्डन आवर होते हैं, उसी तरह से सांप काटने के भी गोल्डन आवर होते हैं। जितना आप डिले करोगे उतनी आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन को नुकसान होगा, और जैसे उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्नेक ऐसे तो हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और हम शॉक में जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को हम क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या फाइनल संदेश देना चाहेंगे?
2: सी, इंडिया में शायद 58,000 लोग मरते हैं स्नेक बाइट के जरिए हर साल
0: जी।
2: ऑस्ट्रेलिया, USA उतनी बड़ी राष्ट्र राज्य है
0: जी,
2: वहाँ 10-12 लोग ही मरते हैं। क्यों इतना फर्क क्यों? वहां तो उतनी जहरीली सांप है, ऑस्ट्रेलिया में भी है टाइपन्स वगैरह, रैटल स्नेक आप तो पड़े होंगे, USA में है
0: जी।
2: लेकिन वहां 10-12 ही मरते हैं। एक ही कारण है, क्योंकि धसने पर वह अस्पताल पहुंच ही जाते हैं आधा घंटे या एक घंटे में
0: जी।
2: यहाँ लोग मरते हैं इसी वजह से, देर में पहुंचते हैं, 3-4-5 घंटे के बाद किडनी फेलियर या फेलियर होने के बाद, तब तो एक फाइटिंग बैटल होता है, नेगेटिव से शुरू होना पड़ता है
0: जी, जी, जी, जी।
2: उसी की वजह से ये डेथ्स होती है। तो अगर सांप का एक सस्पिशन तक हो, अस्पताल पहुंचना ही है। इसकी इलाज एक ही इलाज है, वर्ल्ड वाइड एक ही इलाज है, दैट इज एंटी स्नेक विनम। अपना जो एंटी स्नेक वेनम अब हर पीएचसी में है
0: जी।
2: डॉक्टर साहब जो बोले पीएचसी की तो कुछ डेफिशिएंसी हुई होता भी है, लेकिन ट्रीटमेंट इज अवेलेबल एंड जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट करें उतनी अच्छी प्रोग्नोसिस रहता है
0: जी। सो ट्रीटमेंट अवेलेबल है डॉक्टर मेनन ने बड़ा क्लियर संदेश दिया है, बस हमको वहां तक पहुंचना है, एक बार पहुंच जाएंगे तो हमारा इलाज शुरू हो जाएगा। डॉक्टर भारती आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा हमारे श्रोताओं के लिए?
1: मैं तो ये फिर कहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर
0: जी।
1: हमें पता है हमारे आसपास स्नेक बाइट हो रहा है, हम पशुओं को स्नेक बाइट हो रहा है
0: जी।
1: तो हम अपने प्रिकॉशन अपने लिए भी लें, अपने पशुओं के लिए भी लें, और जैसे मैंने कहा कि जो भी जूते डाल के रखें और गौशाला में जाना जूते डाल के जाएं, दहलीज बना के रखें, स्टैकिंग ना करें, इकट्ठा ना करें, ना चूहे ना पलने दें
0: जी, जी, जी।
1: तो सांप हमें काटने नहीं आता, वो चूहे खाने आता है, उसका खाना है। तो इसलिए ये सावधानी लेंगे तो स्नेक बाइट नहीं होगा
0: जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सांप काटना है, लेकिन काटने से पहले बचाव कैसे करें? डॉक्टर भारती ने उस मुद्दे पे बहुत क्लियर बात की है कि सांप हमें डसने के लिए ना आए, उससे कैसे बचाव करना है, हम अपने घर में क्या क्या कर सकते हैं। हम बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि शुरू तो जिंदगी बहुत अनमोल है और जिंदगी दोबारा मिलती नहीं है, एक बार चली जाती है। तो और सांप काटने से तो जिंदगी जाती है, इससे बड़ा मनाल कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बचा जा सकता है, इसका इलाज किया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं बरसात हमारे सर पे है, बहुत बारिश हो रही है, लेकिन सांप हमारे घर में ना घुसे, अगर घुस भी जाता है तो डसे ना, और खुदा ना खास्ता अगर डस भी लेता है हम तुरंत इलाज कराएं। आपको बरसात के लिए हम यही संदेश देना चाहते हैं। और इसी के साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मेनन आए हैं जो कि विश्वविख्यात इसके एक्सपर्ट हैं, और साथ ही में डॉक्टर उमेश भारती आए हैं जो कि बहुत ही जाने माने एक्सपर्ट हैं। आप दोनों ही महानुभावों का रेडियो गुंजन में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, और श्रोतों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आप तक ना रहे, अपने परिवार में और अपने सारे रिश्तेदारों में, गांव में भी फैलानी है, ताकि हमारे गांव में भी, हमारे रिश्तेदारी में भी कोई भी व्यक्ति सांप काटे से इस दुनिया को अलविदा ना कहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट

निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अब भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और हॉर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस TB। TB हारेगा, देश जीतेगा।
14: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
16: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
14: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल। मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम इंजॉय करना है आज पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम। जी हाँ श्रोताओ, आओ सुनदे ने कार्यक्रम दा सब तो पहला पंजाबी गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

दोस्तों मैं थोड़ी रेडियो दोस्त पिंकी ते मेरे नाल तुसी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो पंजाबी की तादा कार्यक्रम रेडियो गुंजन धर्मशाला ते 91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ ते तुसी हो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त पिंकी कार्यक्रम तुसी इंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीतां दा कार्यक्रम ते आओ श्रोताओ सुनते ने कार्यक्रम दा अगला पंजाबी गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको?
14: है?

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने मैं शशि हाजिर होई हो कार्यक्रम लेके माटी दी महक। तां श्रोताओं कर दे ने कार्यक्रम दा आगाज इस प्यारे दे गीते कने। तुहां सारे इन्ने बनी रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गूंज अपने बंदी।

रेडियो गुंजन धर्मशाला तेने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक आशोताओं बढ़ते न कार्यक्रम जग गए तेने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला थे ना रेडियो गुंजन धर्मशाला थे कने तो हाँ सारे ट्यून किते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक तो श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुनते निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दिन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अग्गे कन्ने सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

यह है तुहां सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना दे न माटी दी महक अपनी रेडियो तो शशि कन्ने तो शो तो बढ़ दे न कार्यक्रम च अग्गे कने सुन दे न एक और प्यारा दिया गीत।

हाँ बोला दिन रेडियो गुंजन धर्मशाला ते कने तोहां सारियां ट्यून कित्ते है अपना समुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने इस वक्त कार्यक्रम चले है माटी दी महक श्रोताओं सुनते ने एक और प्यारा दिया गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। तो हाँ सारे ट्यून कित्ते है अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कने। तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देने माटी दी महक ता श्रोताओं बढ़ते ने कार्यक्रम च अगे कने सुन दे निक और प्यारा दिया गीत।

इस वक्त तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना देन माटी दी महक अपनी रेडियो दो शशि कन्ने ता श्रोताओं बढ़ते न कार्यक्रम च अगे कने सुन देने एक और प्यारा दिया गीत।

92.2 MHz पर ए तो हाँ सारे दा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने तो हाँ सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महक कहाँ श्रोताओं अज कने कार्यक्रम च बस इतना ही तो हाँ सारे ने बनी रहा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने गुड।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल, फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक है।

0: ऐप लगता है।
1: केवाईसी अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज दिखा। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, एटीएम पिन, अकाउंट नंबर डाला
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम ये ओटीपी,
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओ माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
3: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
4: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछे मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
5: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
6: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
7: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
8: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
5: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
7: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
9: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
5: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
10: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
11: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
12: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
13: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
12: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
13: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
12: है?
13: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
12: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
14: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
12: बात तो सही है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और दोस्तों आपकी अपनी आरजी दोस्त रुचिका हाजिर हो गई है कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने, जहां हर धुन जगाए जज्बात। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने एंजॉय किया। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो कुंचन धर्मशाला और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप सभी, गीत सुहाने नए पुराने इस प्यारे से सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

दोस्तों कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और लेकर चलते हैं आप सभी को फिर से एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक की तरफ।

दोस्तों, नए पुराने गीतों का ये सफर आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ अपने मनपसंद रेडियो मंचन धर्मशाला से। आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

0: दोस्तों ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।
1: I don't know you.

जैन धर्मशाला से। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा गीत। आप सभी इसी तरह से एंजॉय करते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, गीत सुहाने नए पुराने, और आज के इस सफर को आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है।
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरे TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
14: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
15: कमाल करते हैं आपकी, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
14: है?
15: हाँ? याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है। इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस TB। TB हारेगा, देश जीतेगा।
16: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
17: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
16: बात तो सही है।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुर्रो और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप्पा लेकर आया हूँ। सचिन कपूर हाजिर भुचुगो तुंदे सभी रे रेडियो सेट में। क्या हाल चाल है श्रोताओं तुंदे? उम्मीद करनो तुंदे हाल चाल ठीक बुने, तो सब भी खुश बुने, तंदुरुस्त बुने और अपने घर खरे खरे बुने हैं श्रोताओं। और खरे रहना भी किया सो बहुत ज़रूरी है, अपने घर खुश रहना भी किया सो बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। कार्यक्रम में जी की तो सब भली भांति जानते हैं कि बहुत सारी जानकारी तो सो गया सो शेयर करनी हिन, तुंदी कॉल्स असु अटेंड करनी हिन और तुंदे पसंदीदा गीत किया सो असु तुसु तक पहुँचाने हिन छोतों और अन्य गलबात भी किया सो कार्यक्रम में चलने हैं। लेकिन सभी पहले तू पता कि धर्मशाला रे मौसम रे गाल बंदे है जनाब, बेघा था काफ़ी ज़्यादा धुंध किया सो धर्मशाला में हेरने जो मुड़े थे छोतों है ना, और अपर इलाके में तो फिर तू पता कि ज़्यादा ही बंदे हा तो काफ़ी ज़्यादा फोग जती अंग्रेजी हैं बल्दे फोग हेरने झुकिया सो मोड़े थे शो तो। और इस समय रे हम गल करूँ तो इस समय की आसो 21 डिग्री सेल्सियस वे मतलब आसपास की आसो तापमान है, और नमी रे गल करूँ तो नमी इस समय की आसो 82% था। तो ये हा शोतों धर्मशाला रा मौसम रे अपडेट इस समय रे। तो बहुत सारी जानकारी जो गया सुतुसु तक पहुँचानी हिन छोतों, और तो है ज़रूर कॉल कर सकते हैं, पसंदीदा गीत होने सकते हैं 7081 8119 पर नंबर आक मौके हूँ फिर शेयर करी नहीं तो होगी 7081 8119 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के श्रोताओं सो हो सकते हैं। एक लारा खास ख्याल रहे कि जानकारी की सो साझा करने लायक जरूर बुआ, जानकारी किया सो रेडियो मंच दसने लायक जरूर बुआ श्रोताओं। जानकारी सोगी सोगी अन्य असु गीत संगीत के सो भी तुसु तक अहो जरूर पहुँचाना है। तो आगाज़ जरूर कर लेंदे हैं श्रोताओं, आगाज कर लेंदे कार्यक्रम रहा इस प्यारे दे गीत सोगे और आगाज तो बाद फिर तू हो गई क्या सो है ज़रूर गलबात कर ले। ता बने रे जुड़े रे आसू सोगे वेड़ी गुंजन रे गूंज सोगे, मिलदन इस गीत तो बाद।

0: दर्शो तो बहुत ही प्यारे दे गीत तो ऐसा भी हूँ 91.2 मेगाहर्ट्स पर और हूँ सचिन कपूर हाजिर भुआ हा तुंदे वीडियो सेट मा रेडी गुंजन धर्मशाला मंजता श्रोतों वीडियो में था हाजिर बुझिए लेकिन फेसबुक रे माध्यम तो भी हाजिर बुना बहुत सारे श्रोता कॉल करू कर देती है जनाब चला तो है फिर कॉल करा है तुसु बिल्कुल कनेक्ट कर दे हिन नंबर 7081 7 09 पर जी बिल्कुल शो दो नंबर अक मौके फिर आऊँ तू होगी शेयर करना चाहता 7081 8 1 1 7 0 9 अक पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और कॉल करी करी अपना पसंदीदा गीत की असो होनी सकते हैं अपने क्षेत्र की जानकारी अस होगी कि असो साझा कर सकते हैं यह गल खास ख्याल रहे कि जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बुआ जानकारी की असो वीडियो मंज दसने लायक जरूर बुआ शो तो है ना तो चलिए जी फिर लेकर चलते हैं तू सब भी जो श्रोता जानकारी रहा सिलसिला की असो ये चले रहना हाँ गीत संगीत रहा सिलसिला की असो भी ये चले रहना हाँ फेसबुक रे माध्यम तो भी है बिल्कुल लाइव चले आए ना थोड़ा घर सिग्नल रहा इशू मुझे लगू कर दा गया चूंकि मेरी लिप सिंह की असो बड़ी लेट मुझे प्रतीत पुछू कर दी कि लेट इच्छू कर दे चलिए कार्यक्रम में मोटा मोटा स्वागत है बड़ा बड़ा स्वागत है हिंदे श्रोतागण अस हो गए कनेक्ट बूना लग रहे हैं कनेक्ट कर देन और पूछ देन कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन नमस्ते जी नमस्ते जी नमस्ते हाँ जी नमस्कार जी कौन बोलूँ देन और हाँ जी कौन बोलूँ देन और कड़ी थो बोलूँ देन
1: साक्षी बोल रही हूँ खनियार कटोई से
0: अच्छा जी साक्षी जी क्या हाल चाल ठीक ठाक ना
1: हाँ जी ठीक है सारे घर के
0: अच्छा साक्षी जी क्या फरमाइश दसना चाहते हैं तो है क्या फरमाइश बोलना चाहते हैं
1: रोल माई वाला गाना सुना दो आज
0: न रोल माई है मैं रोल गई हूँ तेरा दरबार भूल गई हूँ
1: हाँ जी
0: क्या बात है क्या बात है ठीक है साक्षी जी जरूर होने लगी तुसु
1: हाँ जी ठीक है धन्यवाद भाई जी
0: धन्यवाद जी श्रोतों ये गाना वाकई में मेरे दिलों बड़ा लगता ना रोल माइए मैं रुल गई हाँ तेरा दरबार भुल गई हाँ तो जरूर सुन ले इंदे अगले श्रोतागण भी अस होगी कनेक्ट बच्चू करते हैं जरूर कनेक्ट करते हैं और तो फेसबुक के माध्यम तो भी है लाइव हिन था 10 दिन की कौन श्रोतागण सो कनेक्ट हुए ना अस होगी नमस्ते जी
2: नमस्कार नमस्कार सनी भाई ठीक ठाक
0: नमस्कार जी बिल्कुल ठीक ठाक जी तो बल्ला तो ठीक ठाक ना
2: हाँ जी ठीक ठाक जी
0: अच्छा जी कौन बोल लूं देन और कड़ी थो बोल लूं देन
2: हाँ बोले बाबा बड़ो ते सतीश कुमार
0: बाबा बड़ो ते
2: हाँ जी
0: सतीश कुमार जी बाबा बड़ो अंदर क्या मौसम है इस समय गर्मी तो काफी बंदे इस किनारी है ना जी
2: हाँ जी गर्मी बड़ी भारी है थोड़ा बदल वाला मौसम भी है पर कन्ने बड़ा बड़े बवाल दे निकला
0: बवाल हाँ बवाल बड़ा बंदा सतीश कुमार जी और कुछ नोए ताजे बाबा बड़ो रे
2: बस आज कल नोइया पंचायती बनिया लोग देना है मगर लगे हो
0: अच्छा
2: हाँ जी
0: तो नोए पंचायती आले जो नोए दूल्हा दुल्हन बन रहे ने सो कर कर देन कुछ काम की ना आले
2: बस 10 तारीख के बाद सही पूरा काम सारा है ना
0: अच्छा
2: कोई कुछ क्रियाम दिला सन ताम दिला सन लोग बोले हां जा यार दीप के पाइन ने
0: अच्छा
2: कोई बोला हां जा मकान दे ने बोला हरे डंगे लाई ने बड़ी तरह कंप्लेंट आ
0: अच्छा
2: हां जी
0: चलिए एरदे क्या कुछ बंदा है ना जी
2: हां जी
0: जी जनाब बाबा बड़ो थो क्या फरमाइश तो है लेकर आए ना
2: कहां है हेर मेरे कुड़मणु
0: अच्छा
2: हां जी
0: ठीक है जी जरूर तुसु गीत होना लै
2: ठीक है धन्यवाद सर
0: धन्यवाद जी तो श्रोता हूँ सचिन कपूर और एक कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा इस समय लाइव चल रहा और तो है हूँ भी करते हैं हूँ किन्दे श्रोता किन सो लगातार सो के कनेक्ट बच्चों करते हैं और फेसबुक रे माध्यम तो हेरू भी करते हैं हूँ कि लगातार कि असो कनेक्ट बच्चों करते हैं असो के इंदे जितने भी श्रोता हैं और आजकल दौर में भी तो श्रोता हूँ कि कितनी कनेक्टिविटी है रेडियो सो की आज भी तो है सभी पहले कॉल होने भुने की अक्सर भी हूँ मतलब हल्के बच्चे रे की असो कॉल आए हा यानी कि असो के यूथ भी आ असो के बुजुर्ग भी हैं और असो के किया सो हल्के बच्चे भी हैं चाइल्ड बच्चे भी हैं हल्के बच्चे भी हैं। इस कार्यक्रम सो के इस कार्यक्रम की खासियत है कि हर वर्ग रे इंदे श्रोता के अनुसो इस कार्यक्रम हो गए जुड़ रहे हैं हर वर्ग रे मनो के अनुसो जुड़ रहे हैं। बहरहाल इंदे अगले श्रोता भी कनेक्टेड हैं पुछ दिन कुन बल्लू दिन और कड़ी था बल्लू दिन। नमस्ते जी।
3: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
3: साहिल बल्लू दिन पूरा होना।
0: हाँ जी साहिल जी थोड़ी करी जोरे बल्ली दे और क्लियर बल्ली दे।
3: साहिल बोलूं दे नूरपुरा हो।
0: साहिल नूरपुरा हो बोलूं दे।
3: हाँ जी हाँ जी
0: जी साहिल जी
3: और सर थोड़ा ठीक ठाक ना।
0: बहुत बढ़िया जी तो है दसा तो ठीक ठाक ना तुम्हारी आवाज बड़ी घाटी चुंदी साहिल जी पर
3: और तो ठीक ठाक ना।
0: हाँ जी है तो ठीक ना तो है दसा तो ठीक ना।
3: ओ जनाब बड़ी गर्मी भी
0: गर्मी बड़ी है।
3: हाँ जी हाँ जी
0: चलिए भाई गर्मी गर्मी सीजन चल रहा तो गर्मी भी तो बोने
3: ठीक
0: ठीक ने जी तुम सभी आशीर्वाद है प्यार है बिल्कुल खरे न है जिंदे न है सभी मोटे गाल के बंदे है तू पता कि पूरी दुनिया में पता ना जाने कितने हजार या लख मनु कहने सो रात के सुन दिन ते बेगा फिर उठ देने है ना लेकिन अह मतलब उठू कर दिन जिंदे
3: इंसिडेंट हुआ बन्नी माता दीक्षा ਕੁੜੀ 14 ਸਾਲ ਮਰ
0: ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ
3: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ
0: ਬੜੀਏ ਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ
3: ਅਸਰ ਗਾਣਾ ਹੁਣ ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਸੱਪ ਹੋ ਬੋਰਾ
0: ਲਾਲ ਤੇਰਾ ਸੱਪ ਹੋ ਬੋਰਾ
3: ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਿਆ ਜਿਆ
0: ਹਾਂਜੀ
3: ਇਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰਮਾ ਬਾਦਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਿਆ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੋ
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
3: ਉਹ ਹੁਣ ਆਈ ਦੇ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਪੂਰ
0: ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਆਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
3: ਸੋ ਗਾਣਾ ਖੜਾਏ ਦਿਆ
0: ਅੱਛਾ ਨੂਰਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕੜੀਆਂ ਬੱਲੂ ਦੇਨ ਤੋਂ ਹੈ
3: ਸਦਮਾ ਸਲੈਣੀ
0: ਹਾਂਜੀ
3: ਸਦਮਾ ਸਲੈਣੀ
0: ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੈ ਵੈਸੇ
3: ਇਹ ਸਮਝ ਜਾ ਕਨੈਕਟਰ ਆ ਚਾਟੀ ਦੀ ਬੱਸਾ
0: ਅੱਛਾ ਚਾਟੀ ਦੀ ਬੱਸਾ ਕਨੈਕਟਰ ਨੇ
3: ਹਾਂਜੀ
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਚਲਿਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ चलिए श्रोतों कार्यक्रम में इस समय हिंदी अपनी गप्पा के नए सो चल रही हैं और शांत भारद्वाज रहा नवा गीत किया सो होना हाँ चलिए ज़रूर होने लगे शांत रहा गीत भी है लेकिन कुछ एक जानकारी के अनुसो भी तुसो की शेयर करना साझा करना के अनुसो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बुझेगी इन श्रोतों और फिलहाल कार्यक्रम जो आगू बढ़ेंदे हैं और कार्यक्रम में किया सो कुछ एक गीत संगीत तो सुधक किया सो पहुँचन दिन और तत्थों बाद किया सो शांतरा गीत भी और ना रोल माइए ये भी तुसु जरूर होना ले सो लेकिन बिल्कुल मानसून थो निपटने वास्ते किया सो PWD तैयार है 15,500 कर्मी और 1,156 मशीना के ना सो तैनात बुझ गई हैं। जानकारी मुझे लगता है कि सभी पहले तो उस तक पहुँचाना चाहिए थे तो सो पहुँचाए थे श्रोतों है जो कि मेन इनका जो मोटिव हूँ सो जानकारी अपने श्रोता तक फेसबुक रे माध्यम थो भी पहुँचाना और रेडियो रे माध्यम थो ता हज़ार लख श्रोता तक किया सो जानकारी पूछ दिया ता लोक निर्माण विभाग की ऐसो मानसून सीजन रे दौरान श्रोतों प्राकृतिक आपदाओं तो प्रभावी ढंग तो निपटने भी तैयारी के अनुसो पूरी करी ली हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के ऐसो बल्लू आश्रोतों की विभागीय अधिकारी सो की समीक्षा बैठक रे अध्यक्षता करे है और तीन यह निर्देश देते हैं कि विभाग किसी भी आपदा स्थिति में के ऐसो निपटने वास्ते के ऐसो युद्ध स्तर पर तैयार बिखुरा मंत्री ये दसो अशोतों की प्रदेश भर में के असो लगभग 15,500 कर्मचारी सड़क संपर्क बहाल करने व्यवस्था किया सो तैयार रहना है। इति में से 11,137 के न सो बेलदार और 4,428 मल्टीटास्क वर्कर के अंशो शामिल हैं शोतों। तो चलिए जी, बहुत ही अच्छी ये मतलब इस प्रकार हो गया। अगर कोई विभाग तैयारी करता है तो ये जानकारी इन दायित्व बन गंदा कि फटाफट अपने श्रोता तक कैंसर है ज़रूर पहुँचान। और हर विभाग रहा मुझे लगता कि अगर हर विभाग अपनी अपनी जो जो ड्यूटीज़ ने तीनों पहले करा है ना, सोता हर विभाग के सो बहुत बेहतरीन कहला ही सकता है आशो तो है ना। तो इस समय लोक निर्माण विभाग की ऐसा मानसून सीजन वे दौरान तैयारी के अंशों पूरी करी ली हिन और बधाई बो विक्रमादित्य सिंह जो कि लोक निर्माण मंत्री हिन। और आइए जी कार्यक्रम जो आगे बढ़ेंदे हिन और कार्यक्रम मंच फरमाइशारा दौर किया आसो पूरा कर देन बने रहे जुड़े रहे। तो ऐसा बार जे सचिन कपूर सो की गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे शो।

2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ये ट्यून कर रहे और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप गए ना सो बिल्कुल लाइव चल रही तुम दे वीडियो सेट मार सो तो और बहुत प्यारे दे भजन है सभी हूँ सो तो कि ना रोल माइए मैं रोल गई हाँ तेरा दरबार भूल गई हाँ वाकई मैं सो तो और चलिए आज के टॉपिक री और भी किया सोसू ज़रूर गाना हाँ विशेष तौर पर गाना ही गाना था टॉपिक री किनारी लेकिन इन दी श्रोता री फरमाइश है न सो काफ़ी ज़्यादा हिन तो थोड़ी घड़ी न्यो घट के सो है ज़रूर कर लेंदे अगली फरमाइश थे ना हेर मेरे कुड़मणुआ तो ईशान भारद्वाज री आवाज़ में ये गीत हा हूँ लेंदेन शतों इस गीत जो और तत्थों बाद किया सो टॉपिक री और ज़रूर चल रहे बने रहा जुड़ी रहा मिली रहा असु सोगे रेडियो गुंजन रे गूंज सोगे hey!

चलिए ठीक है श्रोताओं जी, नाटी नूटी तो लग रही बिन दिन, लेकिन विशेष तौर पर कि ऐसा जानकारी जरूर इन दे श्रोता तक के ना सो पहुँचना चाहती हिन, और जानकारी सो किसो की श्रोताओं आज का ना जो इनका टॉपिक है तस पर वे है चर्चा की सो जरूर कर ले अंदर। अमूमन यह हर रेडियो मंच एरदन, अमूमन यह मे भी इंस्टाग्राम में रील्स में एरदन, फेसबुक में एरदन, रेडियो रे जरिए भी हूँ दे बुने हैं, टेलीविजन में भी हेरदे बुने ने कि यह अपने गुस्से जो कि आ सुखी करी कंट्रोल कर, क्या क्या नुकसान क्या न सो बुझेगन देन जैन इंसान जो गुस्सा इंदा हो, और हर बार गुस्सा ही चेकरी कि ऐसा इंसान अपने आप जो कितना खोखला कर लेंदा हा अंदर थो शतों, ये जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन कि चलिए इंदा बो, लेकिन इंदी इस गदयाली बोली माँ क्या सो सिर्फ और सिर्फ रेडियो गुंजन माँ इंदा हा, और गुंजन धर्मशाला रे फेसबुक पेज थो लाइव इंदा सिर्फ हिंदी बोली अंदर कि एरा जी गुस्सा किया सो इंसान जो कितना कुछ नुकसान किया सो इंसान दा करी दिंदा हा, गुस्से मामन हो गया सो अपने फैसले लेने भी क्षमता जो खोई दिंदा हा, सो सही आ कि गलत आ तसी आपो बिना पता लगदा कि ये फैसला मैं सही लियो गुस्से अंदर की गलत लियो हा, सभी मोटी गलत आ सभी अहम गलत आ शोतो है ना। और इतों बाद सो जो इंदे अनमोल रिश्ते बुंदे हिन शोतों तिया रिश्ते जो खोई दिंदा हा, अपना मान सम्मान की असो खोई दिंदा हा, मानसिक शांति की अपनी सो खोई दिंदा हा, शारीरिक स्वास्थ्य जो कि असो खराब करी दिंदा हा, और ब्लड प्रेशर बढ़ाई दिंदा हा, शुगर बढ़ाई दिंदा हा, दिलारा दौरा पैने रा खतरा की असो बढ़ाई दिंदा हा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें की असो बढ़ाई दिंदा हा श्रोतों। गुस्सा आगे ऐसी चीज़ हा, इतन का दोस्त नहीं है कभी भी, ये ना सोचना कि मुझे बड़े जलने लगे कि आऊँ बड़ा गुस्सा कर लेंदा या आऊँ बड़ा मतलब कुछ कर लेंदा या कर लेंदे या गुस्से मंच है ना। गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा दुश्मन है, और सिर्फ तुसु नुकसान पहुँचाने तकर है, तुम्हें रिश्ते खराब करने तकर है ये गुस्सा शो तो। और गुस्से में अक्सर गया सो ऐसा ही बुंदा हा, अह अपने रिश्ते खराब कर लेंदे न, अपने नाते खराब कर लेंदे हैं, गुस्से मन च अह जो शायद इंदे मन चेता भी ना बहुत सो अह कने दिंदे हैं, गुस्से में अह कई घर के अंशतों सो बर्बाद हेरदे हेरन मतलब बुंदे हेरन, कई घर बर्बाद बुंदे गए ना सो हेरन शोतों, कई रिश्ते टूटते हेरन है ना। गुस्सा एक स्वाभाविक भावना है, लेकिन जहने ये अनियंत्रित बुझगंदा ना, जहने अनबैलेंस बुझगंदा है, तक कई स्तर पर नुकसान की असो पजाई दिंदा है शोतों, और रिश्ते और भरोसा सब भी मोटी गल। गुस्से में मनु किया अक्सर ऐसे कड़वे शब्द या अपशब्द बलि दिंदा हा, जो सामने वाला किया सो सहन ना कर सकता हा, और सिरे दिला में किया सो चोट लगे गंदी हा, इतों सालों पुराने रिश्ते के न उम्री रे रिश्ते के न सो टूटे गंदे, फिर सो जाए घर वाले होगी भून, जाए सो दोस्त होगी भून, जाए सो पड़ोसी होगी भून, सो तो है ना रिश्ते टूटे गंदे न, फिर ही टूटे गंदे हिन जाने तो गुस्से में कुछ भी आप शब्द किया सो बलि दिनता सो फिर रिश्ते टूटते हिन शो, तो ये गुस्सा बुने रहे नुकसान किया सो आऊँ तुसु तक शेयर करो करता हा शो, तो साझा करो करता हा, सही निर्णय ना ले सकते हैं, सही निर्णय लेने की क्षमता की असो खोई दिंदा इन शोतों है, क्रोध री अवस्था में दिमाग से दिमाग के असो फाइट और फ्लाइट मोड पर चले गंदा है ना, यानी कि ऐसे मोड पर चले गंदा हा, ये बाकी में ही चले गंदा है श्रोतों कि बिना सोचे समझे जोखिम भरे फैसले के न सो है ले लेंदे हिन, जत्थों जीवन भर के सो बाद में पछतावा हुंदा हा श्रोतों। ता गुस्से में बहुत सारे मैं दसो किया है रिश्ते बर्बाद बुंदे भी हिरुन, सो जहने भी गुस्सा ही अपने आप जो थोड़ा करे शांत रखा अपनी जीवा जो कि सो आराम दिया, और गुस्से में अगर बहुत ही गुस्सा इच्छू करता है शोता हूँ ता अपने आप जो कंट्रोल करा ये करे लंबी सांस लिया, और अपने आप जो किया सो रोक के दिया, अपने आप जो किया सो थमे लिया, बहुत कुछ बची गाना हा, बहुत कुछ बची गाना हा, और अगर 24 घंटे या हर पल या हर
त्रिये पल तो है गुस्सा गुरु कर दे हिन और गुस्से माँ तो है कसी भी कुछ भी वल्लू कर दे हिन ता तुंद अपना मान सम्मान घट बुच्चू करता हा शोदों तुंदे अपनी इज्जत घट बुच्चू कर दे हा और तुंदे अपने रिश्ते के न सो टूटू कर दे हिन अक टाइम फिर ऐसा इंदा कि इंसान सिर्फ अकेला रह गंदा हा शोदों। सो इस तरीके की टॉपिक जो असू जरूर हगू लेकिन गाना गीत संगीत भी असू जरूर तुझ तक पहुँचाने हिन लेकिन चलते नूरपुर थो फरमाइश थी और ईशान भारद्वाज राग नवा गीत दसो कर दे और सुरेश वर्मा री आवाज़ में ही ये गीत किया। सो ए जरूर हुन दे बने रहा जुड़े रहा रले रहा मिली रहा और जो रलने मिलने रहा मजा ना शो था सो करिए बने सो अक्सर रली मिली कर किया सो जरूर रहा बहरहाल हुन दे तू सब भी ये गीत वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच बन रहे तो ये सब आरजे सचिन कपूर सो के

0: शत एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून गुरु और कार्यक्रम मिंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही ता चलिए कार्यक्रम जो हागो बढ़न दे हिन और इन देख ले शोता सो गे कनेक्टेड हिन ऐ गुस्से रे गल बात किए सो लोरे भी आशोतो यानी कि टॉपिक की है सो लोरा के है बखूबी जानते हिन कि गुस्सा अस्वास्थ्य कितना हानिकारक का लेकिन तत्वों बाद भी आए गुस्सा करना क्या सो छाड़ देन है ना भली भांति जानते न है सब भली भांति में जो लगते रूबरू न है सब यह गल्ला था कि गुस्सा असु सभी वास्ते कि सो कितना हानिकारक था लेकिन फिर भी ऐह के न सो गुस्सा करते हैं शो तुम मुझे लगता बहुत कम ऐसे मनु बंदे हैं जो अपनी बोली पर विराम दे सकते हैं बोली पर विराम देना मतलब अपने रिश्ते जो किया सो बचाए करे रखना अपने रिश्ते जो किया सो मजबूत रखना बरहाल इन दे श्रोता का ना सोगे कनेक्टेड हैं पूछते हैं कौन बल्लू दे नमस्ते जी
1: नमस्कार महाराज जी
0: जी महाराज नमस्ते ठीक ठाक राजीव बाजी
1: बिल्कुल राजीव बाजी महाराज जेड़ा तो है जो गीत गावा
0: जी
1: ए है कोई कम से कम 10-11 साल दे होंदे इन दे सियाने गांदे ही है
0: लाल तेरा सापा ओ बोरा
1: हां जी हां जी आ ते है बंदल के गांदे बोल है
0: हां जी हां जी
1: एरा एदा के दे वांका गुण ये मैं बणदा
0: जी जी
1: ते दुए बंद जेड़े गुस्से वाली गल बल्ले आ
0: जी
1: ये ता बिल्कुल छोड़ा ने गल बल्ले आ इंसान जो अकदा गुस्सा ना करना चाहिदा ही
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अच्छा ਗਰਮ ਜੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਕਨੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ
0: ਨੇ ਜੀ
1: ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
0: ਜੀ ਜੀ ਜੀ
1: ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸੋਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
0: ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ
1: ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੋ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੋਟੀ ਇਕੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਤਿੰਨੋ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੋਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਸੀ
0: ਜੀ
1: ਅੱਛਾ ਦੂਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦੂਆ ਮਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਆਪੂ ਚੁੱਪ ਵਿੱਚ ਗੱਚਾ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ

0: जो बड़ा प्यारा होगा है,
1: हाँ क्या
0: क्योंकि
1: बात है।
0: तस गुस्सा न करना था सी दुआ कने को जो तस ये कने ना दे ता पुमा ते कने तो परमात्मा ने बड़ा प्यारा भक्त होंदा, क्योंकि तस तू ही गल कने नी ना कि जे गुस्सा चले आ तो छुप जा रहो बाहर निकल गन दे नु कई ऐसे गारे रंती घर किले किले रही है ना तो गुस्से उगे बाहर निकल जाए।
1: निकल गया जी, निकल गया। सच बोलन दें तो है, बिल्कुल सत्य गल है।
0: हाँ तो घर अब सु किले किला था घमन उरे छुअर का गुस्सा कदी कनाना ना चिंदा अगर गुस्सा चले बया ना तो बड़े प्रेम प्यारा होगी तो उससे समझाना चिंदा।
1: अच्छा चला मन्ने लिया। हरदेव जी तुसुले बड़ा एक्सपीरियंस है, तुंदी उम्र उम्री का बड़ा एक्सपीरियंस है तुसुले, है ना जी। और कदी समय की ऐसो अकदम गुस्सा चलिंदा कसी भी
0: हाँ
1: इंसान
0: जी
1: जो कि ऐसो कसी भी जाए सो घरे ना है जाए सो बाहर ना, तो एकदम की ऐसो गुस्सा चली दिंदा चलींदा है ना, कसी भी
0: हाँ जी
1: गल्ला पर
0: हाँ
1: चली ना या कसकरी हरकता पर चली ना, है ना। तो
0: हाँ जी
1: सो अपने आप जो कि करे ढाला किसे रा गुस्सा के सो थोड़ा करे शांत बच गया। अच्छा और दुए मन हो गया सो बुरा ना लगा है, पट करी करी गया सो बली दिन देना अगले बंदे हो जाए, कितनी भी बेइज्जती महसूस बवा, कितनी भी सेरे इंसल्ट बवा, सो जो गुस्सा करो करता तस्यू ना महसूस बंदा, है ना। यह गल्ला रहा तस तस तस समय तस सिचुएशन में अपने आप जो है कि ऐसो की करे थोड़ा करे ढाली लैन कि रिश्ते भी खराब ना बुन।
0: हाँ जी हाँ अपने रिश्ता हमने खराब ना हो तो अस दूबे कने दस कोई प्रेम प्यारा दी गल कने दिया दस वो किसी बुस्से गुस्सा ना करा फिर आस्ते आस्ते टलदे टलदे टप्पू टली गंदा रहा एक ने करदा चल छड़ जा गल्ला ही बुंदी रही गल्ला है आज कई छड़ी इंदे चलो कोई गल ना
1: कोई गल
0: मतलब
1: ना।
0: अरे थोड़ी थोड़ी गल्ला पिछे गुस्सा करना सब ठीक ना बुंदा।
1: अच्छा
0: हाँ जी हाँ जी महाराज
1: चले चलिए महाराज। तो है समय समय पर किया सो कार्यक्रम में कॉल करी करी किया सो अपने अपनी तरफ थों कुछ ना कुछ जरूर इनपुट किया सो दिन दही ना उन्दा तहे दिल थों धन्यवाद करनो जनाब। जनाब क्या फरमाइश था।
0: जनाब तो ब्यागा में आकर भजन होना हो
1: अच्छा
0: साढ़े छह वजह मेला 2 दिन का राम नाम गुण गाल है अतना इटके आके धर्मशाला हो आसो भजन
1: अच्छा मेला
0: मेला
1: दो
0: मेला 2 दिन का राम नाम गुण गाल है।
1: ठीक है जी। जरूर हूँ अल्लाह तो सोएगी था ना जी। ठीक
0: ठीक है महाराज जी
1: है महाराज
0: धन्यवाद
1: धन्यवाद।
0: महाराज।
1: शो तो FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला तो है सभी जीवन गुरु और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप कहना सो चल रही हैं। बहरहाल कार्यक्रम अगले श्रोता भी कनेक्टेड हैं पुस्तन कौन बलुंदर। नमस्ते जी।
2: नमस्ते नमस्ते
1: नमस्ते जी। नमस्ते ठीक ठाक राजीव बाजी
2: जी जी जी जी कभी तो बात कुछ तो बता रहे हैं आपसे ठीक है
1: अच्छा
2: स्वस्थ है तो ही
1: बिल्कुल। और
2: बस
1: क्या काम कर लूँ रे जी।
2: बस कुछ कोई विशेष नहीं है सही है ठीक ही है लगभग सब ठीक है।
1: अच्छा चलिए बहुत अच्छा जी। क्या बोलना चाहते हैं क्या फरमाइश है तुम्हारी।
2: फरमाइश कोई नहीं मेरी बस आपको विषय था उसी में कुछ आगे बढ़ाना चाहता हूँ।
1: जी जी जरूर बोलना
2: तो
1: मेरे
2: आप
1: विषय पर
2: गुस्से के बारे में बता रहे थे।
1: जी
2: देखो गुस्से में तो ये है कि सबसे पहले बात यह है कि गुस्सा कभी आपसे बड़े आदमी गुस्सा आए भी तो भी हम उसको गुस्से को निकाल नहीं सकते।
1: हाँ
2: जैसे बॉस पे गुस्सा है तो उसको कैसे निकालना,
1: हाँ
2: बॉस पे गुस्सा नहीं निकाल सकते तो अपने से छोटे पे गुस्सा नहीं है ये
1: जी
2: भी कभी इग्नोर करना पड़े। दूसरे गुस्से में हम अपना विवेक भी खो जाते हैं
1: जी
2: चेतना हम अपनी खो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप पर निर्भर है कि आपने जो अपनी वाणी है
1: जी
2: उस वाणी को बीणा में बदलना है या बाण में बदलना है। दो बातें हैं बाण और बीणा, शब्द है कि वो
1: जी
2: थोड़ा सा फर्क है, एक को पेट फटा है दूसरा ये सिंपल। तो आपने अपने जो वाणी वाणी है उसको बीणा में बदलना है वो भी आप पर निर्भर करता है, या बाण की तरह जो होनी है
1: जी
2: वो भी आप पर निर्भर करता है।
1: जी
2: तो अगर आप वाणी को ढीला बनाना चाहते हैं तो निर्भर करता है, अगर वाणी को बाण की तरह चुभना चाहते हैं वो भी आप पर निर्भर करता है, वो बिल्कुल सही है। अच्छा सचिन जी, इसके अलावा एक मेरे बात और है, आज जुलाई महीना लगा हुआ, ठीक है, इस जुलाई महीने में न जाने बहुत सारी शहादतें हुई थी देशभक्त क्रांतिकारियों की, तो क्यों ना हम थोड़ा सा उनको भी सम्मान कर लिया जाए तो क्या बुरा होगा। सही बात है। तो
1: जी बिल्कुल
2: देखो मैं तो आज एक, जैसे खुद ही हम बोस को ही ले लेते हैं, तो खुद ही हम बोस जी 16 साल की उम्र में उनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, ठीक है, जबकि अंग्रेजों ने ही कानून बनाया था कि 18 साल से कम हम किसी बच्चे को फांसी पर नहीं चढ़ा सकते, उन्होंने
1: बिल्कुल
2: अपना ही कानून बनाया, खुद ही तोड़ दिया, ठीक
1: खुद ही
2: है।
1: तोड़ती
2: ऐसे ना जाने तो हम बोस की उम्र उसमें 16 साल की थी, और
1: जी। अजी तुंदी आवाज़ ना पुजू करती है सुधगर। हेलो माफ़ कर सो तो यार आवाज़ के सो ना पुजू करते हैं आ तो कॉल डिस्कनेक्ट के सो सो करना पे है। बहरहाल बहुत सारी फरमाइशा हिन सो तो सुधगर है ज़रूर पहुँच ले दो फरमाइशा है कर सकते हैं पूरी सो ज़रूर कर ले। और फेसबुक तो फिलहाल ले लेंदे इजाज़त है ना। और ये बोलना चाहनो कि क्या बोलना चाहूँ सो वापिस इसी गरीब बोलूँगा बहरहाल लेके चलते हैं शोधों तू सभी जो है फरमाइश रही और बने रहे जुड़ी रहे असु सोगे रेडियो गुंजन रे गूंज सोगे।

श्रोतों हमें समय बुझी गया तुसु सभी थवा इजाजत लेने रहा तुसु सभी जो अलविदा बनने रहा वापस फेरी मोल देन थोड़ी देर बाद, लेकिन फिलहाल ता इजाजत ले लें देन फिलहाल ता चली बन देन। और जो इंदा आज का टॉपिक तो श्रोतों गुस्सा ना करना, जैन गुस्सा ही था अपने आप में कि करी कंट्रोल किया सो लेना हाँ, क्योंकि गुस्से तो गुस्सा करने तो शो तो बहुत सारे फैसले के ने सो गलत बुझे गंदे ने इंदी जिंदगी रे, बहुत सारे रिश्ते के ने सो खराब बुझे गंदे ने इंदी जिंदगी रे। अच वो गुस्से में किया सो पता ना लगता क्या है, क्या करू कर दे क्या बल्लू कर दे हिन, बहुत सारे रिश्ते है खराब बुंदे भी हेरे बुने अपने आसपास भी हेरे बुने कि कितने रिश्ते के न सो गुस्से रे कारण खराब हुए हैं, है ना, लड़ाई झगड़े रे कारण के सो खराब हुए हैं। मना मन ज शांति रखा श्रोतों और भगवान रा ना के सो जरूर जप दे रहा, मना मन शांति हुआ तो सब कुछ खराब हो चिकंदा हा श्रोतों, बस प्रीत किया सतस मुर्री आले हो गए लाई लिया, प्रीत किया सो भोले शंकर सो गए लाई लिया, है ना, ता गुस्सा ना कर ले प्रीत लगरली लगुरी बोले तो सब कुछ ठीक पूछ गाना शतो। एवं गुस्सा ना करके तुसु के क्या फायदे इन, मानसिक शांति तुसु चले इन्हें, है ना, शारीरिक स्वास्थ्य तुंदा किया सो खराब पूछ गाना हा शतो, रिश्ते तुंदे बेहतरीन पूछ गाना, हंसद खेल दे किया सो दिन दिन निकले गाने सांझ निकले गाने हाँ, है ना, सही निर्णय लेने की क्षमता किया सो बड़े गाने हाँ, मान सम्मान किया सो ठीक पूछ गाना, मान सम्मान किया सो बड़े गाना तुंदा किया यार फलाना बंदा किया सो खरा बेचारा, है ना, या फलाना फलाना की सो खरा तो फलाना की सो खरा शो तो, है ना, शारीरिक स्वास्थ्य की सो बेहतरीन रहना शो तो, और बहुत फायदे हैं गुस्सा ना करने रहे तो है अखबारी इति पर कंट्रोल करी करते रहा कि तुसु कितने फायदे बनते कितने रिश्ते तुम देखे सो बेहतरीन बनते हैं। तो हूँ सचिन कपूर है भाई तुसु सभी थो ले लेनो इजाजत, गंदे गंदे वैसे ही बनना चाहनो, हंसते रहे मुस्कुराते रहे और रेडी गुंजर मारजे सचिन कपूर जो ये हूँ दे रहे और हूँ दे रहे इस अपने गाधे कार्यक्रम जो नमस्ते धर्मशाला।

0: ऑडियो जंगल।
1: नमस्कार, 91.2 MHz पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। अब आप सभी सुनेंगे रुचिका के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों की हेडलाइंस पर। इंडोनेशिया को उन्नत मिसाइलें देगा भारत, दोनों देशों में 14 समझौते। शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित होंगे और कार्यालय, 43,000

अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार ने कहा कि युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर खेल, नवाचार, रचनात्मक गतिविधियों और समाज सेवा से जोड़ना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। उनका कहना है कि युवा ही देश का भविष्य है और सही समय पर इन्हें सही राह दिखाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक शिक्षित, स्वस्थ, नशे और अन्य व्यसनों से मुक्त युवा ही देश के भविष्य निर्माण में सहायक हो सकता है। उपायुक्त कार्यालय के NIC सभागार में आयोजित मैं भारत की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित एंटी चिट्टा अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, आपदा प्रबंधन तथा अन्य सामाजिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में मैं भारत के स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाएगा। इससे युवाओं को समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची परमानेंट वेटलिस्ट को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आवास प्लस सिस्टम में पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल आरम्भ किया गया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विलोपन प्रक्रिया डिलीशन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ये मॉड्यूल ग्राम सभाओं को सिस्टम द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची की समीक्षा करने, लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने और निर्धारित पात्रता एवं प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने की सुविधा प्रदान करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रत्येक संशोधन का कारण प्रणाली में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ने इस्तेमाल की गई

खाली कांच की बोतलों की रिसाइकिलिंग के लिए वाईवैक योजना की मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी को लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों को एचपीएमसी के खाली कांच की बोतलों की वापसी के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल कांच के कचरे का सही तरीके से निपटान होगा बल्कि योजना से जुड़े सभी लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिलों के युवाओं के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त तक धर्मशाला स्थित सिंथेटिक ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली की तैयारियों को लेकर आज मिनी सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भर्ती रैली के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने एसडीएम एवं तहसीलदार धर्मशाला को रैली का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसआईआई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र एनसीओई धर्मशाला द्वारा कबड्डी खेल में बालिका खिलाड़ियों के लिए 15 से 16 जुलाई 2026 तक चयन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। सहायक निदेशक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को एसएआई के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा उच्च स्तरीय कोचिंग, खेल किट, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं एवं उपकरण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, शैक्षणिक सहायता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं तथा खेल विज्ञान विशेषज्ञों का सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रवोवो सुबियांतो के बीच हुई शिखर वार्ता में भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की आपूर्ति पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब हमारे दोनों देशों के लिए एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। उनका कहना है कि 2018 में स्थापित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी अब विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में नई गति प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ये कार्यालय कुछ समय पहले ही शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के लोगों को इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारियों व पेंशनरों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 7 इम्पैनल्ड बैंकों के साथ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से बोर्ड से जुड़े करीब 43,000 कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। विद्युत भवन कुमार हाउस शिमला में आयोजित कार्यक्रम में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना की उपस्थिति में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। बोर्ड की ओर से मुख्य लेखा परीक्षक अर्जुन सिंह ठाकुर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि संबंधित बैंकों की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधियों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। राज्य के समर वेकेशन स्कूलों में 12 जुलाई से मॉनसून ब्रेक शुरू हो रही है जो 12 अगस्त तक जारी रहेगी। हालांकि विंटर वेकेशन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां 7 से 12 अगस्त तक होंगी। ऐसे में जो शिक्षक इस शैक्षणिक सत्र में विंटर वेकेशन स्कूलों में 42 दिन की छुट्टियों का लाभ उठा चुके हैं और उनके तबादले या उनके डेपुटेशन समर वेकेशन स्कूलों में हुआ है, उन्हें अब 12 जुलाई से 12 अगस्त तक होने वाली छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और बाबा बर्फानी 5वें दिन यानी मंगलवार को लगभग अंतर्ध्यान पूरी तरह से पिघलना शुरू हो गए। पिछले साल ऐसे यात्रा के 7वें तो इससे पहले 10वें दिन हुआ था, यानी हर साल हिमलिंग के पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। इस बार 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और अब तक 1 लाख यात्री ही दर्शन कर पाए हैं। 3 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 3,880 मीटर ऊपर बनी पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ का हिमलिंग हर साल प्राकृतिक रूप से आकार लेता है।
श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अफसरों ने भी स्वीकार किया है कि हिमलिंग अब समय से पहले पिघल रहा है। सूत्रों की माने तो बोर्ड अगले साल से यात्रा की शुरुआत 25 जून के आसपास करने पर विचार कर रहा है, ताकि हिमलिंग कम से कम 10 से 15 दिन बना रहे। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।

ये तो शशि के साथ तो श्रोताओं कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और श्रोताओं आप सभी ने फोन किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नमस्कार जी, FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद भी करता हूं और ये चाहता भी हूं दिल से कि आप सभी ठीक होंगे और ठीक रहेंगे। श्रोताओं, ठीक रहना और ठीक होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। अगर आप ठीक हैं तो सब कुछ बढ़िया रहता है, सब कुछ ठीक रहता है। श्रोताओं, है ना, बढ़िया रहना, ठीक रहना, खुश रहना, तंदुरुस्त रहना, यही जीवन का सत्य है। और अगर इस तरह का जीवन आपको मिला है तो आप बहुत अपने आप को लकी मानिए, आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो चलिए जी, मैं सचिन कपूर हूँ, गुड इवनिंग धर्मशाला को होस्ट कर रहा हूँ इस समय। और कार्यक्रम 8 बजे तक बिल्कुल चलेगा आपके रेडियो सेट पर, रेडियो गुंजन धर्मशाला में। सबसे पहले बताएंगे आपको धर्मशाला का मौसम, इस समय क्या स्थिति है धर्मशाला के मौसम की। जी बिल्कुल श्रोताओं, अगर हम बात करें तो इस समय 21 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और नमी की बात की जाए श्रोताओं, तो नमी इस समय जो है बिल्कुल नमी भी बढ़ी हुई है। इस समय 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो धर्मशाला का तापमान है। श्रोताओं, इस तरह का तापमान जो है वो हम बहुत

सौभाग्यशाली जो है वो खुद को मानते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो इस समय का तापमान है, 21-22 डिग्री के सेल्सियस का। और नमी की बात की जाए, ह्यूमिडिटी जिसको कहा जाता है, तो लगभग लगभग 75% के आसपास जो है वो ह्यूमिडिटी है। तो कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बहुत सारे गीत हम आप तक पहुंचाएंगे, जानकारियां बहुत सारी हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, और अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी जानकारियां जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

शो तो बहुत ही प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना FM बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला। आप सभी ने जो है वो इस समय ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी हमारे साथ बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। ये 8 बजे तक कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल चलता रहेगा। श्रोताओं आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियाँ जो है वो आप तक हम साझा करते हैं। 15 तोला सोना 1 किलो चांदी के साथ 2 अरेस्ट हुए। जी बिल्कुल श्रोताओं, जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते क्षेत्र फतेहपुर निवासी टांडा मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक के घर हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले का पुलिस विभाग ने एक सप्ताह में खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 55 वर्षीय अज्जू पत्नी पति रमेश कुमार तथा 27 वर्षीय चंदन पुत्र डिडू राम, दोनों निवासी बंगाली कॉलोनी गग्गल जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। श्रोतों पुलिस ने आरोपियों की निशानदही पर हमीरपुर में दबिश देकर चोरी के 15 तोला सोना और 1 किलो चांदी भी बरामद की है। श्रोतों मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच जो है वो की जा रही है कि किस किस की जो भूमिका है वो इस चोरी के दौरान जो है वो रही है। श्रोताओं मिली जानकारी के अनुसार पुलिस थाना धर्मशाला में 29 जून को भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 और 331 के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता जो कि डॉक्टर वैजेंद्र प्रसाद वाज के मेडिकल कॉलेज टांडा में चिकित्सक हैं, उन्होंने पुलिस को बताया था कि वह 2 दिन तक घर से बाहर थी। इस दौरान 27 और 28 जून की रात को फतेहपुर स्थित उनके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जानकारियों का पिटारा श्रोताओं यूं ही चलता रहेगा। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर। गीत संगीत का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा, चलता रहेगा।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और आप सभी बने हुए इस समय जुड़े हुए हैं। इस समय आरजे सचिन के

कपूर के साथ। बहुत बहुत स्वागत पुनः आप सभी का, हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही खुलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। बहुत प्यारा सा गीत सुना आप सभी ने, चुरा के दिल मेरा घोरिया चली। तो आप सभी के भी दिल किसी न किसी किसी न किसी गोरी ने तो ज़रूर चुराए होंगे, है ना। जो शादीशुदा हैं उनके तो चुरा ही लिए हैं, लेकिन जो शादीशुदा नहीं है उनके भी तो ज़रूर चुराए होंगे किसी न किसी गुड़िया ने। तो बहुत प्यारा से ये गीत है श्रोतों, और इस गीत को आवाज़ दी है अलका याग्निक और कुमार शानू ने। मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी मूवी से लिया गया ये गीत था श्रोतों। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, साझा करते हैं। धर्मशाला में अब ओला उबर की तर्ज पर जो है वो क्लिक्स टैक्सी सेवा, यात्री खुद तय करेंगे सफ़र का किराया। जी बिल्कुल श्रोताओं, प्रदेश की स्मार्ट सिटी धर्मशाला और इसके आसपास के क्षेत्र में सफ़र करना अब न केवल आसान होगा बल्कि आम जनता की जेब पर भी भारी नहीं पड़ेगा। श्रोताओं जेब जो है वो भारी नहीं होगी अब इनकी भारी तो हो जाएगी, समझ रहे हैं आप, भारी तो हो जाएगी लेकिन भारी नहीं होगी। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो टैक्सी चालक हैं, जो टैक्सी यूनियन है, उनका किराया जो है वो, चलिए उन्होंने भी अपना घर परिवार जो है वो चलाना है, गाड़ी की किस्त देनी है, टायर टप्पा होता है, अन्य बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो टैक्सी है क्लिक्स टैक्सी, इस पे जो है वो खुद तय करेंगे सफ़र का किराया, है ना जी। तो आम जनता की जेब पर भारीपन जो है वो नहीं रहेगा। महानगरों में चलने वाली ओला और उबर जैसी नामी कंपनियों की तर्ज पर जो है वो अब कांगड़ा घाटी की क्लिक्स ऐप आधारित टैक्सी सेवा ने दस्तक दे दी है श्रोताओं। इस स्वदेशी मोलिविट्री प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यात्री अपना किराया जो है वो खुद तय करेंगे। इस नई डिजिटल पहल से स्थानीय लोगों छात्रों और देश विदेश से आने वाले हज़ारों पर्यटकों को अब टैक्सी के मनमाने किराए और मोल भाव से स्थायी मुक्त मिलेगी श्रोताओं। तो ये कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही चलता रहेगा। लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ।

बिल्कुल श्रोताओं, बहुत प्यारा संगीत आप सभी ने सुना। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है, तो जनाब गुजरिए फिर हद से। चलिए जी, हद से तो नहीं गुजरना चाहिए, चाहे प्यार हो चाहे कोई भी चीज़ हो। हद से गुजरने से जो है वो तकलीफ़ ज़रूर होती है, और ख़ासकर प्यार में तो तकलीफ़ है ज़रूर होती है। लेकिन ये एक माता पिता अपने बच्चे के लिए जो है वो, मैं भी ये गीत जो है वो गा रहे हैं कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुज़र जाना है। तो आइए जी, फेसबुक के माध्यम से भी लाइव हो जाते हैं जनाब। कहते हैं कि समय के अनुसार जो है वो हमें ढलना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि समय से बड़ा गुरु जो है वो कोई भी नहीं है जी। समय आपको जो है वो सब चीज़ें श्रोताओं सिखा देता है, लोगों के चेहरे जो है वो आपके आगे रख देता है, लोगों की असलियत जो है वो आपके आगे पेश कर देता है। सो समय से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है, समय सबकी असलियत जो है वो बता देता है, सारी चीज़ें पर्दाफाश जो है वो कर देता है। बहरहाल, मैं हूँ सचिन कपूर, कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला आप सभी सुन रहे हैं। बिल्कुल लाइव कार्यक्रम इस समय चला है वेड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए जी, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को जानकारी के पिटारे की इस ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण हिमाचल के समग्र विकास में इस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने आज यहां विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभाग में खाली पड़े पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जा रहा है, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी बन सके। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में नई भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को बंद कर उसकी जगह बीजी राम जी योजना लागू करना हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत केंद्र सरकार 100% धनराशि उपलब्ध करवाती थी, जबकि नई योजना में कुल खर्च का 10% राज्य सरकार को वहन करना होगा। इससे राज्य की सीमित वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, इसलिए इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। श्रोताओं, तो जानकारियों का पिटारा यूं ही उठाया जाएगा, जानकारियों का पिटारा जो है वो यूं ही हम उठाते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और इस नाचीज सचिन कपूर के साथ। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी श्रोताओं को ये प्यारा सा गीत। गीत के बोल हैं श्रोताओं, गा रहा हूँ इस महफिल में, दिल का के कसूर मूवी से लिया गया ये गीत है और कुमार शानू की बेहतरीन आवाज में आप सुनेंगे ये प्यारा सा गीत।

चलिए गाइए ना अभी, आप सभी क्यों चुप हो गए? मैं तो इसलिए रोक दिए ये गीत कि मुझे लग रहा था कि आप झूम रहे होंगे इस समय, क्योंकि सभी थके हारे जो हैं वो अपने अपने ऑफिस से, अपने अपने कामों से जो हैं अब वो घर जा रहे होंगे, है ना। तो मुझे तो लगा कि आप भी गाएंगे कि गा रहा हूँ इस महफिल में। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना रेडी गुंजन धर्मशाला में। मैं आपका अपना आरजे वीडियो जो कि सचिन कपूर हूँ श्रोताओं, और कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा तो यूं ही खुलता रहेगा जनाब। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को अगली जानकारी की ओर। भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिला के युवाओं के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त तक धर्मशाला स्थित सिंथेटिक ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। श्रोताओं, रैली की तैयारियों को लेकर बुधवार को मिनी सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भर्ती रैली के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने SDM एवं तहसीलदार धर्मशाला को रैली का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी विभागों के बीच जो है वो उनको आदेश जो है वो सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जो हैं वो दिए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को अभ्यर्थियों के ठहरने की व्यवस्था, वाटरप्रूफ टेंट, वाहन पार्किंग, पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना, अतिरिक्त बसों की उपलब्धता, चिकित्सक एवं एम्बुलेंस की तैनाती, सफाई व्यवस्था, मोबाइल, शौचालय, पेयजल, विद्युत तथा इंटरनेट सेवाओं सहित सभी आवश्यकता व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खेल शिक्षा व तकनीकी शिक्षा अधिकारियों को भर्ती प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु भर्ती स्थल पर सक्षम अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए, ताकि अभ्यर्थियों को कोई मतलब साधारण भाषा में बोलूँ तो अनकंफर्टेबल फील ना हो और उन्हें असावधानी जो है वो फील ना हो। तो जनाब, जानकारियों का पिटारा तो यूं ही चलता रहेगा, गीत संगीत का पिटारा भी यूं ही चलता रहेगा। आप सभी इस समय बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं RJ सचिन कपूर के साथ, और आइए ये जानकारियां यूं ही चलती रहेंगी श्रोताओं। लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस गीत की ओर, जुड़े रहिएगा इस नाचीज के साथ।

श्रोतों FM बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत प्यारा सा गीत हम सभी ने सुना कि क्या आपको याद है, क्या तुम्हें याद है जो भी कस्में खाई थी। जी ज़रूर ही याद तो होंगी और याद रहती भी हैं वो कस्में, है ना। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम में यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और इसी तरह जानकारियों का सिलसिला चलेगा, इसी तरह गीत संगीत का सिलसिला भी चलेगा श्रोतों। चलिए अगली कुछ जानकारियां जो है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप सभी इस समय जुड़े हैं आपके अपने रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, तो अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं श्रोतों। हम आजकल आप सभी जानते हैं बाखूबी की फेसबुक के ज़रिए भी हम आपके बीच में जो है वो लाइव आ रहे हैं और लाइव बातचीत कर रहे हैं ज़रूरी भी है ना। तो चलिए, क्योंकि हम धर्मशाला में हैं और मॉनसून की एंट्री हो चुकी है, तो हमें कदम कदम पर जो है वो सतर्क रहना है। कदम कदम यानी कि डेट वाइज डेट जो है वो हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, खासकर मॉनसून के समय श्रोतों। तो प्रदेश में 13 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जो है वो बताया गया है। जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में मॉनसून की वर्षा का क्रम लगातार जारी है श्रोतों। हालांकि आज धर्मशाला में सुबह के टाइम हुई है, उसके बाद नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगर मैं बात करूं तो प्रदेश में 13 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहेगा। इसी दौरान कई ज़िला में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना को देखते हुए 11 जुलाई का येलो अलर्ट बताया गया है। 11 जुलाई तक जो है वो येलो अलर्ट बताया गया है और जारी किया गया है श्रोतों। मौसम विभाग के अनुसार 8 जुलाई यानी कि आज से जो है श्रोतों वो हमीरपुर कांगड़ा मंडी शिमला आज रात से हमीरपुर कांगड़ा मंडी शिमला और सिरमौर ज़िला में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है श्रोतों। कल 9 जुलाई को केवल मंडी और शिमला ज़िला में भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी है, भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है श्रोतों। इसके बाद 10 जुलाई को 5 और 11 जुलाई को 6 ज़िला के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है श्रोतों। राज्य में पिछले 24 घंटों की अगर मैं बात करूं, 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हुई है। तो मॉनसून से रिलेटेड ये जानकारी थी, मौसम से रिलेटेड ये जानकारी थी। तो 13 जुलाई तक जो है वो बारिश का येलो अलर्ट है, तो सावधान सतर्क, नदी नालों के साइड ना जाएं। हमारे धर्मशाला में बहुत छोटे छोटे नाले हैं लेकिन बहुत ख़तरनाक है, उस साइड भी ना जाएं, नदी की साइड ना जाएं, लैंडस्लाइड वाले एरिया में ना जाएं। इन बातों का आप खास ख्याल रखें क्योंकि जीवन है अनमोल। और लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। पड़े रहिए, जुड़े रहिएगा, यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

जी जनाब, मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी। ये बात तो सच है कि नहीं है? सच है ना, मानते हैं इस बात को कि वाकई में कभी कभी तो मोहब्बत जो है वो मिलती है, और कभी कभी मोहब्बत जो है वो होती भी है। ये बात 101% सच है। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने वीडियो सेट पर। ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव आप सुन रहे हैं और ये कार्यक्रम बिल्कुल लाइव इस समय चला हुआ है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में लेके चलते हैं आप सभी को। जानकारियों का पिटारा जो है वो ख़त्म नहीं होगा, जानकारियों का पिटारा चलता रहेगा। तो लेके चलते हैं आपको अगली जानकारी की ओर। निजी मशीनरी हायर करने के लिए जो है वो एडवांस टेंडर की व्यवस्था। मॉनसून सीज़न में निजी मशीनरी हायर करने के लिए राज्य में टेंडर की व्यवस्था होगी, जबकि बरसात के दौरान नियमित अंतराल में जो है वो मंगलवार को शोधों विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने मॉनसून सीजन के दौरान प्रदेश के समक्ष चुनौतियां और संभावित चुनौतियां और इससे निपटने के लिए जो है वो विभाग के जो लोग हैं उन्हें तैयार कर लिया है, उन्हें पूरी तरह से जो है वो तैयार रखा है श्रोतों। जी बिल्कुल, मानसून से निपटने के लिए जो है वो पूरी तरह से पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो तैयार है। जी बिल्कुल, तो ये पूरी जानकारी जो है वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे। बहरहाल आप सभी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं आरजे सचिन कपूर के साथ, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने रेडियो सेट पर, वेडी गुंजन धर्मशाला में। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

0: छोटो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेली गुंजन धर्मशाला आपने ट्यून किया है और अब वक्त हो चुका है श्रोतों समाचारों का।
1: श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अल नीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में यह घटकर 24% रह गई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख

श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि नियामक प्रोत्साहनों के माध्यम से गिफ्ट सिटी एक वैश्विक विमान लीजिंग और वित्तीय पोषण केंद्र के रूप में उभर रही है। श्री नायडू ने कहा कि 2026 के बजट में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र इकाइयों के लिए कर छूट की अवधि बढ़ाकर 20 वर्ष कर दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। यह मामला वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध धन के हेराफेरी से जुड़ा हुआ है। जांच में पता चला कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए निजी कंपनी और उसकी संबंध इकाइयों में स्थानांतरित किए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की 27 मार्च की मूल्यांकन योजना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने की सहमति दे दी है। यह योजना खाड़ी देशों के उन नियमित विद्यार्थियों के लिए थी जिनकी 12वीं की बोर्ड परीक्षा ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण रद्द हो गई थी। न्यायालय ने केंद्र सरकार और CBSE से जवाब मांगा है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आज शाम एक इमारत ढह गई। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार मलबे में 4 से 5 लोगों के फंसे होने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीमें भी राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है। क्यों, अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है।
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: श्रोतो, अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं सचिन कपूर इस समय बिल्कुल लाइव मौजूद हूँ आपके वीडियो सेट पर। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली कुछ एक जानकारियाँ आप तक साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के समर वेकेशन वाले स्कूलों में 1 माह का अवकाश रहेगा। श्रोतों, राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक मानसून अवकाश का कार्यक्रम जारी हो गया है। शिक्षा विभाग के तय शेड्यूल के अनुसार प्रदेश इन स्कूलों में 12 जुलाई से 12 अगस्त तक 1 महीने की छुट्टियां जो है वो दे रहा है। 1 माह की छुट्टियां रहेंगी। श्रोतों, विद्यार्थियों और शिक्षक नियमित कक्षाओं से अवकाश पर रहेंगे। प्रदेश में हर वर्ष बरसात के मौसम को देखते हुए समर वेकेशन स्कूलों में जुलाई अगस्त के दौरान मानसून अवकाश दिया जाता है। लगातार बारिश, भूस्खलन और सड़कें बंद होने जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था वर्षा से लागू है छुट्टियों के दौरान स्कूलों में नियमित शिक्षण कार्य बंद रहेगा। श्रोताओं, लेकिन यानी कि पढ़ाई लिखाई का कार्य बंद रहेगा। राज्य बिजली बोर्ड के 73,000 कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए जो है वो खुशखबरी है। ये खुशखबरी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे कि राज्य बिजली बोर्ड के 73,000 कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए क्या खुशखबरी है, ये पहुंचाएंगे इस गीत के बाद। आप सभी यूं ही बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडी गुंजन धर्मशाला, आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक और जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोतो, BPL परिवार में शामिल होने को 13 जुलाई तक करें अप्लाई। प्रदेश सरकार ने BPL परिवारों के चयन के लिए चल रहे अष्टम चरण की समय सीमा बढ़ा दी है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी संशोधित आदेशों के अनुसार अब आवेदन प्राप्त करने, पात्रता का सत्यापन और ग्राम स्तर पर अनुशासा की पूरी प्रक्रिया 13 जुलाई तक जारी रहेगी। इसके बाद सभी उपचारकर्ताएँ पूरी कर 20 जुलाई तक BPL परिवारों को संशोधित सूची प्रकाशित की जाएगी। अब इस अवधि को बढ़ाते हुए आवेदन एवं सत्यापन की अंतिम तिथि 13 और सूची प्रकाशन की तिथि 20 जुलाई निर्धारित की गई है। श्रोताओं, कार्यक्रम में जानकारियों का सिलसिला चला हुआ है इस समय श्रोताओं, और आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ यानी कि रेडियो गुंजन की गूंज के साथ। आइए अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सीबीएसई से सरकारी विद्यालयों के लिए 3468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। इनमें 19 श्रेणियों के 2668 नियमित पदों का मामला हिमाचल प्रदेश सरकार है। चयन आयोग हमीरपुर को भेजा जा चुका है, जबकि 800 अस्थाई अंग्रेजी एवं गणित अध्यापकों की नियुक्ति भी की जा रही है। संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ड्राइंग, विज्ञान और अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, इतिहास, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, कंप्यूटर विज्ञान, ललित कला तथा लोक प्रशासन विषयों के शिक्षकों की भर्ती भी शीघ्र पूरी की जाएगी। शिक्षा मंत्री बुधवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र में चल रहे विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को सरकार की जनकल्याणकारी पहलों को निर्धारित समय सीमा में प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश दिशा का अग्रणी राज्य बने। श्रोतों, प्रदेश जो है वो देश का अग्रणी राज्य बने। जी बिल्कुल श्रोतों, इसी तरह से डॉक्टर BIS परमार डिजिटल विद्यार्थी योजना की समीक्षा करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 तथा 24-25 के दौरान 9,360 विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत जो है वो टैबलेट प्रदान किए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को शोष पात्र विद्यार्थियों को भी बिना प्रत्यक्ष लाभ जो है वो DBT के माध्यम से योजना का लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं। आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ यूं ही।

तो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वीडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वीडी जो कि सचिन कपूर। बहुत प्यारा सा गीत आप सभी ने सुना, एक दिल है और एक वाकई में एक दिल ही तो है ना। फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं, और कार्यक्रम में जानकारी का पिटारा तो इसी तरह चलता रहेगा, गीत संगीत का पिटारा भी इसी तरह चलता रहेगा। तो श्रोताओं बिल्कुल मानसून सीज़न है और इस मानसून सीज़न में अपना ख्याल जो है वो ज़रूर रखें श्रोताओं, है ना। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, ये हम सभी को पता है, लेकिन ज़रा सोचिए ना, खुद से बात कीजिए ना कि हमने कितने करीब पेड़ जो है वो लगा लिए हैं, है ना। तो इस बात को सोचना बहुत अहम है, समझना बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। बहरहाल कार्यक्रम को लेकर चलते हैं आगे और सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा गीत आप सभी के वीडियो सेट पर।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला, और आप सभी बने हुए हैं हमारे साथ वेड़ी गुंजन की गूंज के साथ। तो आशोतो, आइए अब वक्त हो गया है छोटे से अंतराल का, मिलते हैं अंतराल के बाद।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना?
0: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
2: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
0: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गाँव की है। आखिर गाँव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गाँव खुले में शौच मुक्त भी है, मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस। सॉरी, ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे। प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला। और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क को। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी कुछ है?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
12: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
13: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
14: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
15: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला। और अब वक्त हो गया है 7:45, यानी वक्त हुआ है प्रादेशिक समाचारों का वेड़ी गुंजन धर्मशाला में।
16: अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा, प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में हिमाचल के किसानों व बागवानों के हितों की सुरक्षा पर दिया बल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल। कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा, प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए 3,400 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी। और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। शिमला में आज विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्माणाधीन पंचायत घरों को पूरा करने के लिए सरकार 30 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि पात्र लोगों को समय पर इनका लाभ मिल सके। ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए शिमला में हिमाचल हाट का निर्माण किया जा रहा है। बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिला में हरोली विधानसभा क्षेत्र के नंगल खुर्द में आज निजी कंपनी के सहयोग से एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के माध्यम से क्षेत्र

0: में जल संरक्षण, स्वच्छता, कृषि, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास और सामुदायिक सशक्तिकरण जैसे कार्य किए जाएंगे। इससे 6 गांवों के 9000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि क्षेत्र में लगभग 2200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क की पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसी वर्ष सितंबर माह में आयोजित करने की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के दौरान संभावित ट्रेड डील को लेकर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों का स्वागत है, लेकिन इनमें हिमाचल के बागवानों और किसानों के हितों की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आयात शुल्क घटाकर पहले ही कम कर दिया गया है, जिसे और नहीं घटाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आयात शुल्क में कटौती का सीधा असर प्रदेश के सेब उत्पादकों और किसानों पर पड़ सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसे सभी मामलों पर गंभीर मंथन की जरूरत है और जब भी प्रदेश के किसानों और बागवानों के हित प्रभावित होंगे, कांग्रेस सरकार उनकी आवाज मजबूती से उठाएगी और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
1: चाहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड डील्स होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। यू के साथ ऑलरेडी हो चुकी है, वैसे ही यूनाइटेड किंगडम के साथ भी होनी चाहिए, अमेरिका के साथ भी होनी चाहिए, सभी मुल्कों के साथ होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसमें हिमाचल के बागवान, हिमाचल के किसान के जो हित है उनको सुरक्षित रखना, ये हमारा उसमें दायित्व बनता है। चाहे वो स्टोन फ्रूट्स है, चाहे वो कल फ्रूट्स है, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स है, हर चीज में जहाँ से भी इसका इंपोर्ट होता है या जहाँ से भी हिमाचल उसको और राज्यों में भेज रहा है, उसमें अगर बाहर से उसमें इंपोर्ट ड्यूटी को कम किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि हिमाचल के बागवान को उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के ऊपर गहर चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कानून व्यवस्था, कथित भ्रष्टाचार, पंचायत चुनावों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी को लेकर सुक्खू सरकार पर निशाना साधा है। वे आज धर्मशाला के डाढ़ चामुंडा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत आयोजित प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल जैसे शांतिप्रिय प्रदेश में लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में पूरी तरह विफल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से निराश है और आने वाले समय में इसका जवाब लोकतांत्रिक तरीके से देगी।
2: हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से लोगों को गोलियों से भूना जा रहा है, शिमला में दिन दहाड़े एक महिला की हत्या कर दी जाती है, देवभूमि हिमाचल प्रदेश को ऐसा बर्बाद कर दिया जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। डेढ़ महीना बीतने के बावजूद भी आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं करा रहे। संदेश बड़ा साफ है, स्पष्ट है, जब चुनाव होगा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का ऐसा सफाया होगा जो आज से पहले कभी नहीं।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्सेंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी विद्यालयों के लिए 3,468 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है। शिमला में आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 158 विद्यालयों को CBSE पाठ्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 146 विद्यालयों को CBSE की संबद्धता प्राप्त हो चुकी है। रोहित ठाकुर ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 2024-25 के दौरान 9,359 विद्यार्थियों को डॉ. YS परमार डिजिटल विद्यार्थी योजना के तहत टैबलेट प्रदान किए गए हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर समान रूप से ध्यान देने का आह्वान किया है। वे आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हटवाड़ में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक, तकनीक आधारित और रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए ऐतिहासिक सुधार लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा, नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने नई नवाचार नीति को मंजूरी दी है। सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन गंभीरता, पारदर्शिता और समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना है। इस दौरान उन्होंने मॉनसून सीजन के दौरान संबंधित विभागों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए।
3: भारत सरकार की जो योजना है, अच्छी प्रोग्रेस हमको देखने को मिली। कुल मिलाकर लक्ष्य यही है कि केंद्र सरकार के द्वारा जिस प्रकार से ये लक्ष्य रखा गया है कि जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति उस तक भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके, उस दिशा में हमने अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया है कि गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, कामों को जल्दी हम उनका निपटारा करें।
0: प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 5वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर उनके सुपुत्र व लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, विधायक हरीश जनार्था सहित कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी वीरभद्र सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद कंगना रणौत ने आज कुल्लू जिले के चंसारी गाँव में NHPC के सहयोग से समाज सेवी संस्था द्वारा संचालित मोबाइल मेडिकल वैन आधारित प्राथमिक व निवारक स्वास्थ्य सेवाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरदराज व दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है। कंगना रणौत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अनेक योजनाएं चलाई हैं। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने HPCL प्रबंधन से बेघर परिवारों को एक मुश्त मुआवजा देने की मांग की है ताकि प्रभावित परिवारों को राहत मिल सके। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने HPCL के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर बेघर परिवारों से जुड़े मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया है कि हाउसलेस परिवारों को 75% मुआवजा एक मुश्त देने का प्रयास किया जाएगा।
4: जो परिवार है सबको जो है एक मुफ्त में पैसा दे दो ताकि गरीब लोग भी जो है अपना मकान लगा सके। MD साहब ने जो है हमें ये आश्वासन दिया है जिन्होंने घर नहीं बनाए हैं उनको 75% जो है एक मुफ्त में पैसा दिया जाएगा, जो हमारे को 28 लाख मिलना है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश के समग्र विकास में ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की अहम भूमिका। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में हिमाचल के किसानों व बागवानों के हितों की सुरक्षा पर दिया बल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में राज्य सरकार पूरी तरह विफल। कानून व्यवस्था व भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा प्रदेश में CBSE से संबद्ध सरकारी स्कूलों के लिए 3,400 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी। और सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
3: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
4: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
5: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहां सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
6: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
7: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
8: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
9: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
10: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
7: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
9: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
11: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
7: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू।

0: जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
1: हमारी जनगणना हमारा विकास।
2: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
3: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अजामत।
4: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
3: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
4: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
3: है?
4: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
5: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
3: बात तो सही है।

ते हैं आपको उन्नत मिसाइलें देगा भारत। दोनों देशों में 14 समझौते। शिमला से कांगड़ा स्थानांतरित होंगे और कार्यालय। 43,000 बिजली बोर्ड कर्मियों और पेंशनरों को मिलेगा 1.5 करोड़ तक का बीमा कवर। विंटर वेकेशन स्कूलों में छुट्टियों का लाभ ले चुके स्थानांतरित शिक्षकों को नहीं मिलेगी मानसून ब्रेक। पीएम सेतु योजना को देश भर में लागू करेगी सरकार। ऐसा पहली बार बाबा बर्फानी 5वें दिन ही अंतर्ध्यान। 3 लाख श्रद्धालुओं को दर्शन नहीं। अब समाचार विस्तार से।

उपायुक्त कार्यालय के NIC सभागार में आयोजित मैं भारत की जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित एंटी चिट्टा अभियान, स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, आपदा प्रबंधन तथा अन्य सामाजिक एवं विकासात्मक गतिविधियों में मैं भारत के स्वयंसेवकों का सहयोग लिया जाएगा। इससे युवाओं को समाज निर्माण में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार हिमाचल प्रदेश ग्रामीण विकास विभाग के निदेशालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची परमानेंट वेट लिस्ट को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से अंतिम रूप प्रदान करने के लिए आवास प्लस सिस्टम में पोस्ट डिलीशन मॉड्यूल आरंभ किया गया है। विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विलोपन प्रक्रिया डिलीशन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ये मॉड्यूल ग्राम सभाओं को सिस्टम द्वारा तैयार प्राथमिकता सूची की समीक्षा करने, लाभार्थियों के विवरण को सत्यापित करने और निर्धारित पात्रता एवं प्राथमिकता मापदंडों के आधार पर आवश्यक संशोधनों की सिफारिश करने की सुविधा प्रदान करता है। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रत्येक संशोधन का कारण प्रणाली में दर्ज करवाना अनिवार्य होगा। पर्यावरण संरक्षण और सतत कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहल करते हुए हिमाचल प्रदेश बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम ने इस्तेमाल की गई और खाली कांच की बोतलों की रिसाइकलिंग के लिए वाईवाई योजना की मानक संचालन प्रक्रिया SOP को लागू किया है। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं, खुदरा विक्रेताओं और वितरकों को HPMC के खाली कांच की बोतलों की वापसी के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे न केवल कांच के कचरे का सही तरीके से निपटान होगा बल्कि योजना से जुड़े सभी लोगों को आर्थिक प्रोत्साहन भी मिलेगा। भारतीय सेना द्वारा कांगड़ा और चंबा जिलों के युवाओं के लिए 1 अगस्त से 14 अगस्त तक धर्मशाला स्थित सिंथेटिक ग्राउंड में अग्निवीर सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली की तैयारियों को लेकर आज मिनी सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त विनय कुमार की अध्यक्षता में सेना और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भर्ती रैली के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। अतिरिक्त उपायुक्त ने SCM एवं तहसीलदार धर्मशाला को रैली का नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया SII के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE धर्मशाला द्वारा कबड्डी खेल में बालिका खिलाड़ियों के लिए 15 से 16 जुलाई 2026 तक चयन परीक्षण आयोजित किए जाएंगे। सहायक निदेशक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र धर्मशाला ने बताया कि चयनित खिलाड़ियों को SAI के आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषज्ञ प्रशिक्षकों द्वारा उच्च स्तरीय कोचिंग, खेल किट, आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं एवं उपकरण, प्रतियोगिताओं में भागीदारी, शैक्षणिक सहायता, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं तथा खेल विज्ञान विशेषज्ञों का सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई शिखर वार्ता में भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मिसाइल की आपूर्ति पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए 14 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब हमारे दोनों देशों के लिए एक सुनहरा दौर शुरू होने वाला है। उनका कहना है कि 2018 में स्थापित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी अब विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में नई गति प्राप्त कर रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को प्रदेश सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से धर्मशाला में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के नए कार्यालय का शुभारंभ किया। ये कार्यालय कुछ समय पहले ही शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिले के लोगों को इस नई सुविधा के लिए बधाई देते हुए कहा कि कांगड़ा तथा आसपास के जिलों में अन्य पिछड़ा वर्ग की बड़ी आबादी निवास करती है। आयोग का कार्यालय धर्मशाला स्थानांतरित होने से लोगों को अब अपने कार्य के लिए शिमला नहीं आना पड़ेगा। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने कर्मचारियों व पेंशनरों के कल्याण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 7 इम्पैनल्ड बैंकों के साथ कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन

हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से वोट से जुड़े करीब 43,000 कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। विद्युत भवन कुमार हाउस शिमला में आयोजित कार्यक्रम में बिजली बोर्ड के अध्यक्ष प्रबोध सक्सेना की उपस्थिति में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बोर्ड की ओर से मुख्य लेखा परीक्षक अर्जुन सिंह ठाकुर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, जबकि संबंधित बैंकों की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधियों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। राज्य के समर वैकेशन स्कूलों में 12 जुलाई से मॉनसून ब्रेक शुरू हो रही है, जो 12 अगस्त तक जारी रहेगी। हालांकि विंटर वैकेशन स्कूलों में बरसात की छुट्टियां 7 से 12 अगस्त तक होंगी। ऐसे में जो शिक्षक इस शैक्षणिक सत्र में विंटर वैकेशन स्कूलों में 42 दिन की छुट्टियों का लाभ उठा चुके हैं और उनके तबादले या उनके डेपुटेशन समर वैकेशन स्कूलों में हुआ है, उन्हें अब 12 जुलाई से 12 अगस्त तक होने वाली छुट्टियों का लाभ नहीं मिलेगा। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई थी और बाबा बर्फानी 5वें दिन यानी मंगलवार को लगभग अंतर्ध्यान पूरी तरह से पिघलना शुरू हो गए। पिछले साल ऐसे यात्रा के 7वें तो इससे पहले 10वें दिन हुआ था, यानी हर साल हिमलिंग के पिघलने की रफ्तार बढ़ रही है। इस बार 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं और अब तक 1 लाख यात्री ही दर्शन कर पाए हैं। 3 लाख श्रद्धालु बाबा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। 3,880 मीटर ऊपर बनी पवित्र अमरनाथ गुफा में बर्फ का हिमलिंग हर साल प्राकृतिक रूप से आकार लेता है। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अफसरों ने भी स्वीकार किया है कि हिमलिंग अब समय से पहले पिघल रहा है। सूत्रों की माने तो बोर्ड अगले साल से यात्रा की शुरुआत 25 जून के आसपास करने पर विचार कर रहा है, ताकि हिमलिंग कम से कम 10 से 15 दिन बना रहे। इसी के साथ आज का ये खास समाचार बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार होना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: और इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है, क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड। स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला।
2: और वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया एंट्री, इधर डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए। और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो? प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
9: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
6: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
6: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: है?
14: याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस TB। TB हारेगा, देश जीतेगा।
13: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
10: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
13: बात तो सही है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 FM पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

0: बोलो भाई।
1: बस बताने आया हूँ, स्वच्छता की परीक्षा शुरू हो चुकी है, तैयार हो ना।
2: स्वच्छ सर्वेक्षण तो अभी कर लीजिए ना, आइए।
3: हमारा घर स्वच्छता की हर परीक्षा में अव्वल ही आएगा, और तो और हम सब शौचालय का भी इस्तेमाल करते हैं।
1: पर इस परीक्षा में तो आप सब फेल हो गए।
2: फेल?
1: स्वच्छता की असली परीक्षा सिर्फ अपने अपने घरों की नहीं, हमारे पूरे गांव की है। आखिर गांव भी तो हम सबका घर है। क्यों? अब तो गांव खुले में शौच मुक्त भी है। मिलके साफ रखेंगे तो गांव को मिलेगा फर्स्ट क्लास। तो शुरू कर दो परीक्षा की तैयारी,

0: अरे देवा, बड़ा झटका लगा है।
1: तुम्हारे भी अकाउंट से 5 लाख जाते तो ऐसा ही होता।
2: मेरे अकाउंट से 5 लाख?
1: पाटिल फोकस।
2: सॉरी,
1: ये पढ़ो।
2: डियर यूजर, योर बैंक अकाउंट विल ब्लॉक टुडे, प्लीज इमीडिएटली अपडेट KYC। लिंक भी है।
3: अरे मैडम, ये बैंक का ऐप लगता है।
1: KYC अपडेट करने के लिए ऐप डाउनलोड? स्ट्रेंज, दिखाओ। यहाँ इन्होंने बैंक का समझ के फेक ऐप डाउनलोड किया, यूजर आईडी, पासवर्ड, ATM पिन, अकाउंट नंबर डाला, और
2: वहाँ फ्रॉडस्टर्स को मिल गया। एंट्री इधर, डिटेल्स उधर।
1: जीनियस पाटिल,
2: थैंक यू। पर मैडम, ये OTP?
1: वो भी ऐप से ऑटो फॉरवर्ड हो जाता है।
2: ओह माय फ्रॉड।
1: तुम तो समझ गए, और आप अनजान लिंक से कोई ऐप डाउनलोड ना करें। अक्सर फ्रॉडस्टर्स नकली बैंक ऑफिशियल्स बनके ऐप्स डाउनलोड करवाते हैं और फोन से आपके बैंक के सारे डिटेल्स कॉपी करके अकाउंट से पैसा चुरा लेते हैं। बैंकिंग ऐप्स सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करें। सतर्क रहें, आइए मिलकर चीट्स को बीट करें।
4: तुम लोगों को खोने से डरते हो मित्र, कभी ये भी सोचो कि कहीं इस चक्कर में तुम खुद को तो नहीं खो रहे। जो तुम्हारी खामोशी को नहीं समझ सकता, वो तुम्हारे शब्दों को भी कभी नहीं समझ पाएगा। अकेले चलने का साहस रखो मित्र, क्योंकि यहाँ सलाह देने वाले हजारों मिलेंगे पर साथ देने वाला कोई नहीं। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हें सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि हर किसी पर भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। जितना तुम लोगों के सामने सीधे बनोगे मित्र, ये दुनिया तुम्हें उतना ही ज्यादा उलझाती चली जाएगी।
5: क्या आप नहीं चाहते कि आपका व्यापार छूले आसमान की ऊंचाइयां? तो अपने व्यापार को कीजिए प्रचारित सही तरीके से सही जगह पर। अब विज्ञापन दीजिए और बन जाइए हर किसी की पहली पसंद। व्यापार को मिलेगी नई पहचान, ग्राहकों की संख्या में होगा जबरदस्त इजाफा और आपका मुनाफा बस पूछिए मत। हमारे साथ जुड़िए और देखिए फर्क खुद। अपने व्यापार को दें नई उड़ान। विज्ञापन देने के लिए आज ही संपर्क करें 9816473615 पर। आप बढ़ेंगे तभी तो देश बढ़ेगा।
6: नमस्ते, मैं विकास हूँ।
7: अरे बहू, देख क्या रही हो, प्रगति खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है, उसका स्वागत करो।
8: पापा जी, ये कह रहे विकास और आप कह रहे प्रगति?
9: ये जनगणना के लिए आए हैं। जनगणना से हर जन की प्रगति और विकास दोनों होता है।
6: जी हाँ, मैं पूछूंगा कुछ सवाल और आपके द्वारा दी गई सही और सटीक जानकारी से एकत्र होंगे कुछ आंकड़े, जिससे देश बनाएगा नीतियां और योजनाएं और उससे हर घर तक पहुंचेगी प्रगति और विकास।
8: अब समझी, जनगणना से हमारी प्रगति और हमारा विकास। स्वागत है
10: अंकल, मेरे लिए भी बचे?
6: जी हाँ, एक उज्जवल कल। देश में जनगणना 2027 शुरू हो चुकी है। जब इन्यूमरेटर आपके घर आए तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सही और सटीक जानकारी दीजिए, क्योंकि आपके दिए गए सही जवाब से ही देश आगे बढ़ेगा। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी।
11: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
12: और भाई शुक्ला, तेरी TB के क्या हाल हैं?
13: अरे भाई, 2-4 हफ्ते का इलाज करवाया और TB की हो गई अजामत।
14: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
13: ये क्या, आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
14: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, TB का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
13: हैं?
14: हाँ? याद रखिए, TB का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो TB आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए TB से मुक्ति पाने के लिए TB का पूरा इलाज करवाइए। फुल कोर्स, इंडिया वर्सेस TB। TB हारेगा।

0: देश जीतेगा।
1: मम्मी, पति और पत्नी के गुस्से में क्या अंतर होता है?
2: पति का गुस्सा खांसी जुकाम की तरह होता है, जो आता है चला जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और पत्नी का गुस्सा कोरोना वायरस की तरह होता है, जो उसके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करता है।
1: बात तो सही है।

मेगाहर्ट्ज़ पर। ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं, मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला। तो श्रोताओं, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा भजन।